0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज

0: कुष्ठरोग विशेषज्ञ सेवा
1: 24 घंटा इमर्जेन्सी र फार्मेसी सेवा उपलब्ध।
0: थप जानकारी को लागी कृपा हॉस्पिटल प्राली सुर्खेत रोड आदर्श नगर 10 नेपालगंज वन कार्यालय नजिक नया पेट्रोल पंप को पश्चिम तर्फ। संपर्क फोन नंबर 081-531-0000 र 98-662-24-551।

द्विपटक बैंक अफ द इयर 2024 र 2025 को सम्मान सिटिजन्स बैंक विश्वास को नाम सिटिजन्स बैंक हजुर को प्रगति को सहयात्री।

वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 9805532568।

0: toilet pony, yeah. Extreme energy drink.
1: खुशी के खबर, खुशी के खबर। हमार शहर नेपालगंज में ढेर बरस से सेवा डेटी आयल नेपालगंज नेशनल अस्पताल में ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से रोज दिन स्वास्थ्य सेवा डेटी आयल बा। ई अस्पताल में रोज दिन ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से ओपीडी सेवा देना के संगे ढेर सेवा डेटी रलेक जानकारी कराईटी।
2: जस्तक सर्जरी के सक्कू उपचार, प्रसूति व स्त्री रोग के सक्कू उपचार, नसा व हड्डी रोग के सक्कू उपचार, मस्तिष्क व मानसिक रोग के सक्कू उपचार, छाला रोग के उपचार, नाक कान घाटी रोग के सक्कू उपचार सेवा देती आयल बा।
1: ओस्तक सुगर, ब्लड प्रेशर, मुटु रोग, पेट, छाती, कलेजो संबंधी सक्कू उपचार, पैथोलॉजी लैब सेवा, वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और सबको सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महीनक अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल के सुगर और थायराइड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराईटी।
2: नोट, ई अस्पताल कार्यरत सबको डॉक्टरन से हरेक महीनक अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जाँच में 20% विशेष छूट के व्यवस्था करल बा। नेपालगंज नेशनल अस्पताल बीपी चोक नेपालगंज, संपर्क नंबर 081536465, 98239806665 और 98482804465।

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज

वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 9805532568।

0: Sip on ya.
1: Extreme energy drink.
2: आमै नि सामान खरिद गर्ने यति लामो लिस्ट सर र हेर्दा नेपालगञ्ज देखि लखनऊ सम्म धाउनु पर्ला कि क्या हो
3: हैन बहिनी यसमा आत्तिनु पर्ने केही छैन अब यी सबै ब्रान्डेड कम्पनीको सक्कली र उचित मूल्यको सामान एउटै विशाल बजार मारुति मेगा मार्टमा पाइन्छ यो रुपैडिया बजारको सब्जी मण्डीको छेउमा रहेको मारुति मेगा मार्ट हो बहिनी त्यहाँ शादी विवाहको सबै सामान सौन्दर्य प्रसाधन सुटिङ सर्टिङ साडी अन्डर गार्मेन्ट्स होम एप्लायन्सेस फुड्स विद्युतीय उपकरणहरू आर्टिफिसियल ज्वेलरी किचन तथा टोयलेटहरूको सामान आदि सबै सामग्रीहरू एकै छाना मुनि पाइन्छ
4: स्थान मारुति मेगा मार्ट सब्जी मण्डी अगाडि गल्लीमा नानपारा रोड रुपैडिहा बजार मोबाइल नम्बर 98699564581
5: दैनिक रु 197 रु 50 लाखको बिमा तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता सूर्य ज्योति सही प्लान
6: सूर्य ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स जीवनको लागि
7: खुसीके खबर हमार शहर नेपालगञ्जमा ढेर वर्षसे सेवा डेटी आयल नेपालगञ्ज नेसनल अस्पतालमा ढ्यार विशेषज्ञ डाक्टरनसे रोज दिन स्वास्थ्य सेवा डेटी आयल बा यी अस्पतालम रोज दिन ढ्यार विशेषज्ञ डाक्टरनसे ओपिडी सेवा देनाके सँगै ढ्यार सेवा डेटी रलेक जानकारी कराइटी
8: जस्तक सर्जरी के सक्कु उपचार प्रसूति व स्त्री रोग के सक्कु उपचार नसा व हड्डी रोग के सक्कु उपचार मस्तिष्क व मानसिक रोग के सक्कु उपचार छाला रोग के उपचार नाक कान घाँटी रोग के सक्कु उपचार सेवा देती आइल बा
7: ओस्तक सुगर ब्लड प्रेसर मुटु रोग पेट छाती कलेजो सम्बन्धी सक्कु उपचार पैथोलॉजी ल्याब सेवा वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे और सबको सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महिनाक अन्तिम शुक्रबार काठमाडौँ मेडिसिटी अस्पताल के सुगर और थायराइड रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराइदी
8: नोट ई अस्पतालम कार्यरत सक्कु दातरन से हरेक महिनाक अन्तिम शनिबार निशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जाँचमा 20% विशेष छुट के व्यवस्था करल बा नेपालगञ्ज नेसनल अस्पताल बीपी चोक नेपालगञ्ज सम्पर्क नम्बर 081-536-465 98-239-80-665 ओ 98-482-80-465
9: के तपाईँ आफ्नो भविष्यलाई प्र्याक्टिकल एजुकेसनसँग जोड्न चाहनुहुन्छ यदि त्यसो हो भने अरुणोदय बोर्डिङ हाई स्कुलमा अब कक्षा 11 होटल म्यानेजमेन्ट अध्ययनका लागि भर्ना खुलिसकेको छ यहाँ विद्यार्थीहरूले केवल किताबबाट मात्र होइन व्यावहारिक अभ्यास मार्फत पनि सिक्ने अवसर पाउँछन् मोडर्न किचन प्र्याक्टिकल हस्पिटालिटी ट्रेनिङ स्किल्ड टिचर्स एन्ड डिसिप्लिन्ड लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट अब एकै ठाउँमा
10: आजको समयमा सर्टिफिकेट मात्र होइन स्किल पनि आवश्यक छ आजको समयमा सर्टिफिकेट मात्र होइन स्किल पनि आवश्यक छ त्यसैले अरुणोदयले विद्यार्थीलाई विश्व स्तरको प्र्याक्टिकल एजुकेसन प्रदान गर्दै आइरहेको छ
9: यदि तपाईँ हस्पिटालिटी सेक्टरमा सफल करियर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै भर्ना सुनिश्चित गर्नुहोस् सिट सीमित छन् अरुणोदय बोर्डिङ हाई स्कुल खजुराचार बाके सम्पर्क नम्बर 081-560-143 र 98-580-20-819
11: छोटो समयमा धेरै संस्थामा डाक्टर इन्जिनियर तथा सिए बनाउन सफल पेन्टागन कलेजमा कक्षा 11 लागि विज्ञान व्यवस्थापन तथा कानुन संकायमा भर्ना खुल्यो पेन्टागन कलेज तिनकुने काठमाडौँ
7: हाम्रो घर त मजा बा मने यी पुरान फर्निचर के सामान से घरक चमक घटा दिहल जैसिन लागटा
12: हो त अब त घर के लावा चमक देहे परी जैसिन बा आरामदायी वो लावा कुछ सहल बा
7: ए हो सिन हो कला से चिंता नहीं करो
12: स्टार फर्निचर ल्यान मत सक्कु मिलत जे
7: साच्ची वहाँ काका मिलत त
12: वहाँ त स्टाइलिश सोफा आरामदायी बेड आकर्षक डाइनिंग टेबल टिभी ऱ्याक अफिस फर्निचर म्याट्रेक्स घर बनाइन सबको सामान अक्कै ठाउँमा मिलत
7: ओ डिजाइन आपन चाहल अनुसार फे मिलत त
12: काजे नै मिली वहाँ त आपन चाहल जैसी फर्निचर फेन बना देहत
7: ए डेलिभरी ओ फिटिङ जे
12: बाँके बर्दिया भित्तर फ्री होम डेलिभरी ओ फ्री फिटिङ सेवा फेन उपलब्ध बा ए ओसिनो कलेज से अब हमार घर फेन लावा जैसिन बनाए क्लाक स्टार फर्निचर ल्यान्ड से सुरु करी शिक्षा विकास हो समन्वय इकाई कार्यालय के सामने बीपी चौक नेपालगंज संपर्क नंबर 9980073070 वो 9815007682।
0: यो कृष्ण सार एफएम
13: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज

0: होइन, कौशल्या मेमोरियल अस्पताल यही थियो त।
1: ओहो बाजे, अब उता आइन, ठ्याक्कै यता हेर्नुहोस् त पूर्वपट्टि। हाम्रा सेवाहरू: इन्टरनल मेडिसिन तथा फ्यामिली फिजिसियन सेवा, हार्ट जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ सेवा, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ सेवा, प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा, नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ सेवा, दाँत बङ्गारा तथा मुख सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा, एकुपंक्चर तथा फिजियोथेरापी सेवा, 24 घण्टा रोड एक्सिडेन्ट इमर्जेन्सी सेवा, 24 घण्टा ल्याब एक्सरे र ख वर्गको एम्बुलेन्स सेवा, एयर कन्डिसन इमर्जेन्सी वार्ड, स्ट्यान्डर्ड वार्ड तथा क्याबिनहरू।
2: हजुर, कौशल्या मेमोरियल अस्पताल, कोहलपुर नगरपालिका, वडा नम्बर 9, हलदारपुर बाँके। सम्पर्क नम्बर 0184140007 र 98482363।
3: दैनिक रु 197 रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
4: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि।
5: बीर डेंटल
6: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दात तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमाडौं तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आरके लामिछाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
7: डाक्टर लामिछाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू: दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत ताउने, पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेँलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्र तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
6: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक, भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
7: फोन नम्बर 081-5323-375।
8: के तपाईँले आफूले प्रयोग गर्ने तोरीको तेलको शुद्धता चेक गर्नुभएको छ? तोरीको तेलको क्वालिटी तपाईँ आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति तेल आफ्नो हातमा लगाई बाँच्न सक्नुहोस्। शुद्ध तोरीको तेलमा नेचुरल राग सधैँ आउँछ र त्यो नेचुरल राग धारा शुद्ध तोरीको तेलमा सधैँ आइरहन्छ। हो, तपाईँले पनि तेलको क्वालिटी आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। याद राख्नुहोस्, सबै तेल धारा तोरीको तेल जस्तै शुद्ध चाहिँ नहुन सक्छ। विगत 3 दशकदेखि नेपालीको मुटुलाई स्वस्थ बनाउँदै नेपालको पहिलो NS चिन्ह प्राप्त शुद्ध तोरीको तेल धारा, मुटु चाहिन्छ मुटु।
9: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुक्रन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तालिम केन्द्र खजुरा बाँके के विशेष अनुरोध।
10: कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी हो बनाई। कृषि पेसा है मर्यादित बनाई उद्यमशीलता विकास कै के रोजगारी सृजना करी हो कराई।
9: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई।
10: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू गरी।
9: सफल उद्यमी बनी हो व्यवसाय है निरन्तरता दि आगे बढाई हो बढाइक लगाई। कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई। एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निसेकना हुईले ओहर से हमरे निजी व सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकारिक लाग प्रयास करी वो कराई।
10: थप आवश्यक सरसल्लाह व जानकारी लाग लगभग संघीय व प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय व स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करे लाग अनुरोध बा।
9: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग व तालीम केन्द्र खजुरा बाँके।
11: ओहो, आज डाइह नै मजा लागत हो, मजा से दवाई करेला कहटु।
9: ए तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाइन, पश्चिम नेपालके अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यही कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगंजमा मिलत।
11: ए बात तो ठीक कह लो साची की अस्पताल में क्या का सुविधा मिला
5: वहाँ ता 24 घंटा इमरजेंसी सेवा दैनिक ओपीडी सेवा दूरबीन और लेजर परविधि से शल्यक्रिया जरल घाव उपचार करना संगे NICU PICU ICU हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहाँ पा जाए छोट बच्चा हो भरखर जन्मल बच्चन के सामान्य से लेके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे उहाँ कई जाए
11: ए ओसिनो कल से उहाँ जाए मन फे ढुक्क हुईना चाहल रह
5: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा सम्पर्क नम्बर 081-535-717 कान्ति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा
12: भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं कहाँ जाए तो बढ़िया रही
13: हम भी पहले गैस्ट्रिक बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए हुआ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है
12: सही वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया
13: सुनो हुआ औरतन के बांझपन सफेद पानी महीनावारी में गड़बड़ी गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक बवासीर हर्निया एपेंडिक्स थायराइड पित्त थैली और शरीर में यो गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है
10: हाँ मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नामदर्ता कह के तहदिल हुआ जाए
13: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ संपर्क नंबर 97-46-11-786-98-224-92-377
14: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य

0: होए खातिर आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर नेपाल का अपने क्यूआर।
1: छोटो समयमा धेरै संस्थामा डाक्टर इन्जिनियर तथा सीए बनाउन सफल पेन्टागन कलेजमा कक्षा 11 को लागि विज्ञान व्यवस्थापन तथा कानून संकायमा भर्ना खुल्यो। पेन्टागन कलेज तिनकुने काठमाडौँ।
2: के तपाईँ आफ्नो भविष्यलाई प्राक्टिकल एजुकेसनसँग जोड्न चाहनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने अरुणोदय बोर्डिङ हाई स्कुलमा अब कक्षा 11 होटल म्यानेजमेन्ट अध्ययनका लागि भर्ना खुलिसकेको छ। यहाँ विद्यार्थीहरूले केवल किताबबाट मात्र होइन व्यावहारिक अभ्यास मार्फत पनि सिक्ने अवसर पाउँछन्। मोडर्न किचन प्राक्टिकल, हस्पिटालिटी ट्रेनिङ, स्किल्ड टिचर्स एन्ड डिसिप्लिन्ड लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट अब एकै ठाउँमा।
3: आजको समयमा सर्टिफिकेट मात्र होइन स्किल पनि आवश्यक छ। आजको समयमा सर्टिफिकेट मात्र होइन स्किल पनि आवश्यक छ। त्यसैले अरुणोदयले विद्यार्थीलाई विश्व स्तरको प्र्याक्टिकल एजुकेसन प्रदान गर्दै आइरहेको छ।
2: यदि तपाईँ हस्पिटालिटी सेक्टरमा सफल करियर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै भर्ना सुनिश्चित गर्नुहोस्। सिट सीमित छन्। अरुणोदय बोर्डिङ हाई स्कुल खजुराचार बाँके। सम्पर्क नम्बर 081-560-143 र 98-580-20-819।
3: एउटा राम्रो विद्यालयले केवल पढाइ मात्रै होइन बच्चाको भविष्य पनि बनाउँछ।
2: नेपालगञ्जको बिपी चोकमा अवस्थित जीबीएन सेकेन्डरी स्कुल गुणस्तरीय शिक्षा, अनुशासित वातावरण र अनुभवी शिक्षकहरूको उत्कृष्ट संयोजन हो। यहाँ विद्यार्थीलाई पुस्तकको ज्ञानसँगै संस्कार, आत्मविश्वास र जिम्मेवार नागरिक बन्ने शिक्षा दिइन्छ। आधुनिक शिक्षण विधि र सुरक्षित वातावरणका कारण जीवीएन अभिभावकहरूको पहिलो रोजाई बन्न सफल भएको छ।
3: यदि तपाईँ आफ्ना नानीहरूको उज्जवल भविष्यका लागि विश्वासिलो र उत्कृष्ट विद्यालय खोजिरहनु भएको छ भने आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। जीवीएन सेकेन्डरी स्कुल बिपी चोक नेपालगञ्ज।
2: शिक्षा र सफलताको पर्याय जीवीएन सेकेन्डरी स्कुल। सम्पर्क फोन नम्बर 081-531-570।
4: भर्ना खुल्यो।
2: होप इन्टरनेशनल एकेडेमीमा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा 11 भर्ना खुल्यो।
5: हजुर, कम्प्युटर व्यवस्थापन विज्ञान तथा होटल म्यानेजमेंट संकायमा नयाँ भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ।
2: नेपालगञ्जमा विगत 21 वर्षदेखि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको यस विद्यालयमा सुविधा सम्पन्न कम्प्युटर ल्याब, पुस्तकालय तथा आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला, प्रोजेक्टर मार्फत अध्यापन हुने कक्षा कोठा र सेमिनार हलका साथै विद्यार्थीको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै छात्र छात्राका लागि सुरक्षित छात्रावास, जेनेरेटर तथा चिसो तातो पानीको व्यवस्था समेत छ।
6: फुटसल, क्रिकेट, भलिबल, बास्केटबल र ब्याडमिन्टन जस्ता खेल मैदानको व्यवस्था हुनुका साथै जेहेन्दार तथा योग्य विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था समेत गरिएको छ।
2: यहाँ यातायातको पनि व्यवस्था रहेको
6: होप इन्टरनेशनल एकेडमी, गुणस्तरीय शिक्षाको भरपर्दो आधार।
2: थप जानकारीका लागि
6: सम्पर्क नम्बर 081-551-462, 98-580-24-462, 98-580-20-645। ठेगाना होटल रोयल बाँकेको पूर्वतिर नेपालगञ्ज बाँके।
7: कानके समस्या बा, उपचार कराइकला कहाँ लैजिदा हो?
8: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्रमा जाइन, उहाँ त अनुभवी चिकित्सकको वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कानके परीक्षण हुइट ओत्रकेल कहाँ हो? उहाँ तो लम्बा समय से कान पक्ति रहना, जीर्ण रोग, काने ढुसी, कान खजोइना, कान कम सुन्न, कान दम्मा होइना बिरामी के उपचार ओ परामर्श वो लम्बा समय से कान पक्ती रहले कान के जालिम पाल परल कान हड्डी खैना रोग के ऑपरेशन कई के उपचार हुई। वाकर संगे कान कम सुनना विटामिन के लाग कान में लगाइना सस्ता व महंगा ढेर प्रकार के कान के मशीन विटामिन के रोजाई अनुसार के उपलब्ध फे करा जाए। जस्ते BTE, CIC, RIC जैसी मशीन फे वहाँ मिलत
7: ए ओसिड हो कलसे बुडु हो वहाँ ले जाके उपचार करैले से वजह से सुन से कही त
8: एकदम समय में उपचार करैले से उपचार संभव बा बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केन्द्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बाके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 9848206997 9858023697 ओ 9804 83697 बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी
7: ओहो आज डाई नहीं मजा लागत हो मजा से दवाई करे ना कहतो
8: ये तो ओकर लाग कांति आरोग्य अस्पताल जाई ना पश्चिम नेपाल के अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डॉक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कांति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत
7: ए बात ठीक कहलो साच्ची की अस्पताल में का का सुविधा मिलत
8: वहाँ ता 24 घंटा इमरजेंसी सेवा दैनिक ओपीडी सेवा दूरबीन और लेजर परविधि से शल्यक्रिया जरल घाव उपचार करना संगे NICU PICU ICU हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहाँ पा जाइत छोट बच्चा हो भरखर जन्मल बच्चन के सामान्य से लेके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे उहां कई जाएत
7: ए ओसिनो कला से उहां जाई मन फे ढुक्क हुईना चाहल रह
8: हो तो स्वास्थ्यक हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा संपर्क नंबर 081-535-717 कांति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा

0: मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिको तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक एक बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: Bunny, extreme energy drink.
1: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
2: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य शहर केंद्र जाओ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतने कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बिरामी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। BTE, CIC, RIC जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
1: अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
2: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य शहर केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697।
1: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
3: भर्ना खुल्यो।
4: होप इंटरनेशनल एकेडमी मा नया शैक्षिक सत्र का लागि कक्षा 11 मा भर्ना खुल्यो।
2: हजुर, कंप्यूटर व्यवस्थापन विज्ञान तथा होटल मैनेजमेंट संकाय मा नया भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछु।
4: नेपालगंज मा विगत 21 वर्ष देखि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको यस विद्यालय मा सुविधा सम्पन्न कंप्यूटर ल्याब, पुस्तकालय तथा आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला, प्रोजेक्टर मार्फत अध्यापन हुने कक्षा कोठा र सेमिनार हलका साथै विद्यार्थीको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै छात्र छात्राका लागि सुरक्षित छात्रावास, जेनेरेटर तथा चिसो तातो पानीको व्यवस्था समेत छ।
3: फुटसल, क्रिकेट, भलिबल, बास्केटबल र ब्याडमिन्टन जस्ता खेल मैदानको व्यवस्था हुनुका साथै जेहेन्दार तथा योग्य विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था समेत गरिएको छ।
4: यहाँ यातायातको पनि व्यवस्था रहेको है।
3: होप इंटरनेशनल एकेडमी, गुणस्तरीय शिक्षा को भरपर्दो आधार।
4: होप जानकारी का लागि
3: संपर्क नंबर 081-551-462, 98580-24462, 98580-20645। ठेगाना होटल रोयल बांके को पूर्वतिर, नेपालगंज बांके।
1: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
2: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से OPD सेवा होए के साथ तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाह जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
2: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
1: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क OPD सेवा ले साथ जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
2: संपर्क नंबर 081-536-465, 98-249-80-665 और 98-482-80-465।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज
1: कार्यक्रम घर अंगना के अंतर्गत शनिचर के दिन
2: स्वास्थ्य शिक्षा आयुर्वेदिक नुस्खा सहित घर अंगना में हम लोग आवाज आई
1: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज से देखा भी जाए और सुना भी जाए।
3: दिन भर चाहे जहां रही हो हमार पिया
2: शनिचर के दिन और साथ ही हमार सखी चंदा
1: और हमार सखी संध्या कार्यक्रम घर अंगना
4: घर अंगना।

0: अरे सखी काहे अता जो है इंतजार करा बैठे हो,
1: बोलो
0: अतना इंतजार करावत हूँ, बताओ
1: इंतजार करावत हूँ कि आप अतनी देर से मार बजाए हो प्रोमो बजाए।
0: अरे हम बजाए थे नहीं, मारे
1: है ये नहीं है ना,
0: हम ही मारे बजाए थे कि साथी लोग जहाँ हुई है वो आई के इकट्ठा बैठ जाए कि हाँ आए गए हैं सखी लोग।
1: रहन सखी श्रोता की आप लोग अब सुन के जान जावा जाए कि अब घर अंगना में शुरू हो जाते ही दुजना के झगड़ा नोक झोंक और आप लोग के अंगना में हम लोग आए गवा का। और देखो आज घंटी भी पहले बाजे लागे।
0: हाँ साथी लोगन का पता है ना कि महीना की आखिरी शनिवार।
1: हाँ ये हमारे फोन इन कार्यक्रम भी
0: तो क्या करा जाए, बात कर लिया जाए,
1: ठीक है उठावा जाए तब हम लोग फिर बातचीत करते रहा।
0: हाँ हाँ ठीक है। हेलो
2: नमस्कार।
1: अच्छा तो आप इकट्ठा बैठ गए और की का बुलावा गया चाचा?
2: आप बहुत लोग हैं, 8-10 मिला हम जानित रहा कि अब कहियो इकट्ठे बैठो।
0: 8-10 मिला
1: लोग हैं, गठरी लेके आए हैं, गठरी में बांधे हैं। लेकिन
2: आज गठरी तो लोग गठरी खोलो, आज महीना के अंतिम दिन भी है शनिवार।
1: आज गठरी ना खोला जी, आज हम लोग सोचा जाते आप लोगन से जत्ते हम लोग बात ले लीन जाए उका गठरी बनाए रखा जी, फिर और दिन हफ्ता में खोला जाये।
2: अरे हम लोग नहीं दे वाले हैं, पके आम हम
0: नहीं, अब आप लोगन से ही तो हम लोग सीखा जाते हैं ना।
1: सही बात है,
2: सिखावा तो नाने से सिखावा 30-35 साल सिखावा, कहाँ ले सिखाई।
1: तो कोई बात नहीं, अब आप लोग के सेवा हम लोग करा जाए। पहले आप बताओ आपके स्वास्थ्य कैसे है?
2: आप वही प्रसाद ग्रहण कराओ सबका बस।
1: तो आपके मतलब स्वास्थ्य बढ़िया है, ठीक हो आपके हालचाल?
2: एकदम स्वास्थ्य ना ठीक हो तो आई किसके सामने
0: नहीं आप ऐसे ही स्वस्थ रहा जाए हम लोगन के ही कामना है ना चाचा जी। और
2: बस आशीर्वाद दिए रहो इसे।
0: जरूर।
1: ठीक है तो चाचा अब जैसे महीना के बाद बड़े दिन के बाद ही फोन इन कार्यक्रम भवा है, आपको कुछ कहे चाह जाते कार्यक्रम का अथवा जो सुनने वाले और श्रोता उनका भी कुछ सलाह सुझाव दिया चाह जाते की?
2: नहीं कार्यक्रम तो बहुत अति प्रिय है, इसीलिए हम फोन करके बताए थे और इमा कमी कमजोरी हमका कोई नहीं लगा था, अच्छा रहा था बेटा और हर लोग प्रसन्न है कार्यक्रम।
0: धन्यवाद।
1: आप एक मतलब एक शिक्षक, आप हमका लोगन का शिक्षा दे के बड़ा करागा, हमारे लोग के गुरु हो आप, कुछ शिक्षा संबंधी कुछ सलाह देख चाह जाते कि फोन द्वारा दे दिन जाए?
2: आप फोन द्वारा जो हम देख रहा दे दिए बेटा बस।
1: अच्छा अब आप थक गवा गए, अब आराम करा जाते हैं?
2: हाँ अब आराम करी तब आगे कार्यक्रम
0: चाचा जी के आराम कर
1: अपने आप का आराम ना सोचा जाए कि हम थक गवा गए, आप लोगन के मंत्र अभी हम लोग के ऊपर लागू है हम लोग।
0: हाँ चाचा जी हाँ सही बात है चाचा जी, अगर ना जाना जाए तो हम लोग आप लोग से ही मतलब आपसे ही हम लोग फिर से जाने की कोशिश करा जाइए ना।
1: सही बात
0: है, क्या कि
1: सलाहकार मर तो हम लोग
0: सलाहकार के रूप में तो आप ही हो हम लोगन के
2: सलाहकार में तो है हम सलाह। हाँ। तो यार जब लड़के सब जान का रहे हैं तो उमर टूटी हुई सब देवे नहीं, सब अच्छा अच्छा चल रहा है तो मैं कहाँ थी।
1: ठीक है तो आपके स्वास्थ्य बढ़िया रहा है, अच्छे से रहा जाओ, ऐसे हम लोग के कार्यक्रम में सर सलाह दे करती, हम लोग के साथ दे करती, आपके आशीर्वाद ऐसे साथ देते दे रह जाये। तो आपके बजे वाला गीत संगीत आप जरूर ध्यान से सुना जाये और आपके प्रति हम लोग हमेशा आप लोग के साथ है हम। धन्यवाद।
2: झगड़ा ना कियो दोनों जनी बस।
0: ठीक है चाचा जी,
1: झगड़ा ना करा तो यही करा जाए, तनी नोक झोंक करा जाए,
0: कोशिश तो यही करा जाए कि ना होए ना।
2: चंदा का तो बहुत डांटे लागत है ज्यादा।
1: हां यही तो अभी सखी
0: सही बात। हां चाचा जी सखी मेरे बहुत डांटा थी, आप इनका समझाओ,
1: लागत रोहिन लगी है, आप क्या करें।
2: ठीक है
1: ठीक है नमस्कार नमस्कार।
0: हाँ, तो सखी हाँ ये तो रहे
1: तो सही बात है, आज महीना के अंतिम शनिचर है, आज फोन इन कार्यक्रम है जो आप लोग जाना जाते कि हर हफ्ता कोई ना कोई विषय वस्तु से हम लोग यहाँ आवा जाते ना सखी।
0: हाँ,
1: और कोई ना कोई हम लोग इमा अतिथि का भी आमंत्रण करा जाते, लेकिन समय अनुकूल अनुसार कभी कभी हम लोगों का इस समस्या पर एक कारण से हम लोग कोई ना कोई विषय वस्तु से भी आप लोग से जुटा जाते हैं।
0: हाँ जैसे कि हमारे मतलब राम से नहीं यादव जी रहे लाइन में आए रहे है ना, तो अपने सलाह सुझाव भी बताएं, तो आप लोग भी सलाह सुझाव दिया जाइए है ना सर,
1: फोन करा जाए,
0: ऑनलाइन से जुड़ा जाए,
1: जुटा जाए। और आज के कार्यक्रम में आप लोग जाना जाते हैं 1 बजे से 3 बजे तक घर अंगनामा साथ है रहा जी।
0: हाँ और फोन लाइन से जुड़े के खातिर संपर्क फोन नंबर है 081-415-122। और सखी जो पड़ोस भारत के जो साथी लोग हैं उन लोगों के खातिर है 00977-81-415-122 के लाइन पे आप
1: फोन नंबर आप लोग का बताते गई है, जरूर आप लोग ध्यान में रखा का हो, बीच बीच में भी हम लोग बताते बताते जाओ बतावा जी है इस नंबर पर फोन करा जाए फटाफट कार्यक्रम से जुटा जाए और हम लोग आज नोक झोंक कहा जाता है सकभर जत्ते आपके फोन नहीं ओते हम लोग नोक झोंक ना करा जाए वैसे
0: आप लोग
1: फोन करी ना है ये हमारे गुरु हैं हम लोग का हमका बचपन से जो कहा नहीं है जन्मजात से जो हम लोग शिक्षा ग्रहण करा गया उनसे हम शिक्षा ग्रहण करे हैं और साथे अभी तक भी उनके आशीर्वाद हम लोग के साथे है ये करियातीपुर के राम स्नेही यादव सर तो ऐसे आप लोगों के भी साथ हमेशा ऐसे श्रोता लोगन के मिलते रहा है और हम लोग सकभरी कार्यक्रम में आप लोग के समाज में जहाँ हम लोग भी रहते आप लोग भी रहा जाते इस समाज में कोई समस्या कोई विकृति अथवा कोई और कारण है जो हम लोग का एक उजागर करे खातिर मदद करा जाते हैं और हम लोग के जो समाज में हो रहा वाला संस्कृति कार्यक्रम संस्कृत में जो हम लोग तीज त्यौहार मनावा जाते हैं कल्चर के ऊपर अथवा शिक्षा के ऊपर स्वास्थ्य के ऊपर और हमारे लोगन के जो खान पीन रहा थे जो कि सबसे अमूल्य धन माना जाते हैं अपने शरीर का तो शरीर का कैसे खाना खावा जाए कैसे स्वस्थ रखा जाए और कैसे दिनचर्या बनावा जाए सारा चीज मिलाई के हम लोग घर अंगनामा आई के बैठ जावा जाते तो वह बैठा जाते शनिचर के एक दिन हफ्ता में
0: तो सखी ये तो कम से कम बता दिया जाए कि प्रोग्राम जो वीडियो आवत है हम लोगन के
1: हाँ।
0: तो कौन मतलब आईडी से आवत है ये भी तो बता
1: अरे सखी हम लोग ये कार्यक्रम तो बहुत पुरान पहले से चलावा जाते हैं बहुत श्रोता तो आप लोग जाना जात हुए नी कि कौन पेज से अथवा आप लोग ये तो जाना जात हुए कि रेडियो कृष्णसार FM से प्रोग्राम हम लोग के प्रसारण होते और शनिचर के 1 बजे से 3 बजे तक तो आप लोग एक लाइव भी सुन सका जाते प्रत्यक्ष सुन सका जाते लेकिन अगर आप लोग काम के व्यस्तता के कारण कहीं व्यस्त हो या नए छूट गा नए सुन पावागा तो कृष्ण सार के फेसबुक आईडी है उमा ये कार्यक्रम पोस्ट होते उसके बाद हमारे लोग के म्यूजिक हर कहीं के एक पेज है आईडी है उमा भी पोस्ट होते ये कार्यक्रम हमारे लोग के यूट्यूब में भी जाते ये कार्यक्रम ना कृष्ण सार के हर प्रोग्राम आपके यूट्यूब पेज में भी जाते और साथ ही इमा आप लोग सुन सका जाते हैं
0: हाँ।
1: और इससे भी अगर आप लोग हम लोग से जुटा गया है हमारे लोग के साथ ही
0: हम लोगों के व्यक्तिगत जो है आईडी है जो
1: तो व्यक्तिगत आईडी में भी कुछ साथी लोगन का जोड़ के हम लोगों का शेयर भी करा जाते है और आप लोगन के लाइक कमेंट से हम लोग का उत्साह मिलत है और इस कार्यक्रम में आप लोग लाइक कमेंट करके अथवा कमेंट में भी आप लोग हम लोग का सलाह दे सका जाते है आपके समाज में कौन प्रकार के कौन चीज़ के सर सलाह के जरूरी है वैसे तो आजकल हर कोई का हर चीज सब चीज़ से ज्ञान रहा थे लेकिन क्या होते कोई चीज़ जब तक हल्ला ना करो जैसे कहना बच्चे रोत नहीं तब तक दूध नहीं पावत है उदाहरण के रूप में कहा गवा है तो ऐसे ना जब कोई चीज़ के उजागर ना करा जाए बातचीत ना करा जाए छलफल ना करा जाए झगड़ा ना करा जाए सर सलाह नहीं करा जाता तब तक वो चीज़ फिर उ चमक नई लाई मिलत है तो का धोवे खातिर चमक लावे खातिर हम लोग इमा फिर से चर्चा करा जाते हैं तो आप लोग जरूर हम लोग का विषय वस्तु बतावा जी उ विषय वस्तु पर जरूर आप लोग के समझ हम लोग कार्यक्रम का तैयार करके प्रसारण करा जाए तो सखी
0: हाँ सखी
1: फोन भी हम लोगों के आ चुका है कार्यक्रम शुरुआत भी जा चुका है तो अब कुछ और भी हो चाहिएगा
0: अब सखी कहा है कि व्यापारिक विश्राम के समय भी हो चुका
1: बस
0: है
1: बस यही से अच्छा इससे अच्छा हम लोग हम न चुपाई
0: हाँ।
1: अब देखो हमारे सखी तो बताए दी
0: ने
1: की हमरे वजह से अबे पता चलत रही रोवे लगी रही
0: अरे सखी हाँ? हम आपका मौका दिए रहे बोले खातिर आप बोलो बतवाए लो तब तक हम इधर अपन काम कर रहे
1: हैं अबे आप तो शिकायत वैसे भी कहना है कि डांटी थे आपका
0: हाँ तो आप सुनने वाले तो यही कही है ना डांटा तो कहा थे और का
1: अच्छा बात ही है
0: अच्छा ठीक है हम आपका एकदम बढ़िया गाना सुनेबे कि तबियत शायद खुश हो जाए या तो फिर शिकायत के बौछार आवे
1: हाँ, शायद शिकायत के बौछार ना आपके तरफ तबियत खुश हो जाए
0: हाँ,
1: तो शिकायत के बौछार ना आए
0: हो सकत हुई है कि आपके तरफ से आवे हमरे लिए शिकायत उल्टे
1: अच्छा,
0: काम नहीं है उल्टा चोर कोतवाल का डांटे तो वही वाला हाल हो सकत हो अभी पहले गाना तो सुनियो
1: बात नहीं है पहले
0: गाना तो सुनियो पहले
1: इस संगीत सुन ले बात है बात बोले जरूरी है
0: हम आपका अभी बैठे रहो
1: चला विज्ञापन के तरफ कैसे जल्दी जल्दी विज्ञापन के तरफ जावा जी तो हम लोग का गीत संगीत सुनने मिले नहीं श्रोता तो चला जा
0: ठीक है
3: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाख को बीमा तिरेको संपूर्ण प्रीमियम फिर्ता सूर्य ज्योति सही प्लान
4: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवन को लागी

0: भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं। कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
1: हम भी पहले गैस्ट्रिक बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे। बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
0: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया?
1: सुनो, हुआ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
2: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नामदरता कह के तहदिल हुआ जाए।
1: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ। संपर्क नंबर 97649 11786, 98224 92377। सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
3: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो। सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन्, खुसीको खबर कहिले सुनाउने भनेर।
4: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ, तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन।
3: कति अस्पताल धायौ, कति उपचार गरायौ, अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।
4: होइन, हामीसँग अझै आशा छ। मैले शुभश्री आइबीएफ क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु, जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ।
5: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आइबीएफ क्लिनिक, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित।
3: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो।
4: धन्यवाद शुभश्री आइबीएफ, हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
5: थप जानकारीका लागि शुभश्री आइबीएफ क्लिनिक, सोल्टी मोड, काठमाडौँ। फोन नम्बर 98614169।
6: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज, कृष्णसार जस तेज।

0: सखी।
1: हाँ सखी।
0: गाना तो सुनियो।
1: हाँ सुनें।
0: यार बदल ना जाना मौसम की तरह।
1: हाँ हमको बतावे जरूरत नहीं है आपका। हाँ। हम ध्यान से सुने।
0: मगर बदल जात हो सखी, का करी हम, हमको तो यही परेशानी है।
1: तो का करी, तो आपका लगे कि हम बदल नहीं गई हैं। हाँ, मौका तो दिया आपसे आप
0: मौसम तो बदला था, अभी इंसान भी बदल जाए तो अभी का करी सकी थे ना।
1: हाँ लेकिन मौसमों को तो कुछ नहीं कह सका जाता है।
0: मौसम तो प्राकृतिक है।
1: हाँ, अभी इंसान,
0: लेकिन इंसान कहाँ प्राकृतिक, तो उनके सोचे के समझे के होते है ना।
1: अब फिर कही हो कि हमका सखी फिर मतलब हार नहीं माना थी।
0: हाँ।
1: अगर सबके दिमाग एक हो जाए।
0: हाँ।
1: सबके आँखी एक के मेर हो जाए, सबके नाक एक के मेर हो जाए, तो सब आदमी एक के मेर लगी है ना।
0: वो तो एक हम
1: लोग एक ही जगह बैठा जाते।
0: हाँ।
1: लेकिन सब चीज फरक फरक रहा।
0: लेकिन सोच भी फरक हो जाए।
1: सोच भी फरक फरक रहा था।
0: अच्छा, तो जब सोच फरक फरक हो जाए तो अब देखो बताइए।
1: हाँ, बता।
0: दोस्ती माँ का होते ना,
1: हम शांत
0: सोच एकदम मिलक चाहिए।
1: ऊपर तक ले गई है ना,
0: सोच एकदम मिलक चाहिए का। दोस्ती माँ ही होते
1: चाहिए,
0: मिलक चाहिए, अब मिलक भी हो चाहिए। अरे मतलब वही बात है, चाही के मतलब है कि हो एक चाही।
1: हम कुछ आपका कहे नहीं, हम आपके पहले बात सुन
0: तो बस वही बात
1: समस्या
0: है
1: समस्या के पहचान करे।
0: अब मिला तू लाई है, जैसे कि जिके मन ना मिलत है, मन का मतलब एक दूसरे के बात ना मिलत है।
1: हाँ।
0: तो वो लोग तो दूसर होते हैं।
1: हाँ।
0: लेकिन जब दोस्ती होते है ना तो मन तो मिलक चाहिए ना।
1: हाँ, मिलक तो चाहिए,
0: मिलक चाहिए ना।
1: दोस्ती हो तो अगर, मन मिलक चाहिए।
0: अगर अगर पहला कहे कि आम है तो हाँ हाँ है, कोई कहे कि धूप है, हाँ धूप है,
1: चलो
0: हाँ माँ हाँ मिलावे चाहिए,
1: हाँ माँ हाँ मिलावे चाहिए,
0: तो फिर कैसे मन बदल जाए बताओ ना, कैसे मन
1: अच्छा
0: बदल
1: तो सकी।
0: हाँ,
1: एक बात पूछी।
0: हाँ पूछो।
1: जैसे अब हम तो आयन।
0: हाँ।
1: कार्यक्रम रहा है, आयन बैठे, अब हमका कहूँ नए लागत है कि हम कहाँ बदले हैं, है नी
0: आपका ना
1: ना, हमका नए लाग। जैसे हम लोग सखी तो हुई, मन मिलत है, हमका ये नए लाग कि हम कहूँ बदले हैं। अब आप कहा तो बदली हो, ठीक है, तो अभी के पहचान आप कर पाए हो कि हम कौन जगह बदले हैं।
0: अब
1: तो
0: हमका महसूस हुआ है ना।
1: हाँ, तो
0: हमका महसूस हुआ है ना, काहे कि पहले ऐसा ना रहा, हम कभी कहा नहीं, कहा ना।
1: हाँ नहीं कहो,
0: तो हफ्ता में या बीच में या हमका थोड़ा अनुभव लगा का एक वजह से। हाँ।
1: तो ऐसा करो,
0: काहे लगा हुई है तो आप खुद महसूस करो, बताओ जरूरत नहीं है।
1: हम क्या सोचे थे, जैसे बार बार धक्का आप हमका दे थो, फिर भी हमारे समझ में ना आवत है, तो आपका हमका प्रश्न कहा एक पड़ा ना कि ई जगह आप ई जगह देखो बदले रहे हो, तब तो हम उगे फिर से आपके उगे कारण सहित कुछ कारण बताए सके।
0: क्या बताइए, हम सोचे थे हम दोनों के बीच में ही बात रहे।
1: हाँ।
0: और लोग कहे जाने,
1: लेकिन ये बीच में नहीं रहेगा ना, बात आप कहाँ तक पहुँचाई दिए हो।
0: अरे आप भूल जातो का
1: गीत संगीत सुना, एक बात आप सीधे हमरे पर आरोप लगा कि सखी देखो वो तो गीत संगीत रहा है, लेकिन बदल ना जाना कहे हो नी, यानी कि आप पहले तो सलाह दिए हो कि ये कितना बदल ना जाए हो, जब हम प्रश्न करा तो कहो आप बदल जाती हो सखी,
0: बदल जाती हो।
1: बात तो पूरा सखी सारे श्रोता सखी जान गए, बात तो हुआ तक जान गए, लेकिन कारण ना जान पाए।
0: कारण का है ना, लो सुनो बताइए।
1: हाँ, बताए थे, ध्यान से सुनी थे।
0: अभी तो हम लोग बात करा जाते है ना।
1: हाँ।
0: इके बाद जिसे कुछ काम में आप इतना व्यस्त हो जाते हो।
1: हाँ।
0: कि आपका एक फोन करे का टाइम ना रहते।
1: ये बात।
0: हाँ। और फिर के बाद अगर हम मैसेज करी थे तो के रिप्लाई भी ना आवा थी। इतना व्यस्तता भी तो नहीं,
1: तो गलत हो,
0: इतना व्यस्तता भी तो होना
1: नहीं जरूरी, क्या
0: कि वो अपने दोस्त के लिए, अपने साथी सहेली के मतलब सखी के लिए एक टाइम बिजी हो के भी टाइम निकाले, उनका भी कहते हैं, इनका कहते
1: हैं, हम एक्सेप्ट करी थे। सही बात,
0: वही बात हमारी शिकायत
1: है, जितना व्यस्त हो लेकिन अपने दोस्त की खातिर मतलब एक मैसेज लिखे करती तो टाइम
0: हो चाहिए। चलो ठीक है, काम में व्यस्तता हुए के कारण इंसान कॉल नहीं कर सकत है, अब चलो ठीक है, कॉल करे के खातिर तो फोन हाथ में लेके पड़ते है, मोबाइल है ना।
1: हाँ।
0: काने में लगाए पड़ते है, अब वो काम करे कि हाथ चलावे काम में या कि फोन लगावे, इससे अच्छा फटाफट मैसेज आवा, रिप्लाई दो, अपना काम करो,
1: ठीक है, हम फटाफट करबे, लेकिन हाथ
0: अभी कहाँ, अभी हम यही
1: ऐसे हाथ ना चलेबे, फटाफट करबे। आप कहे हो ना कि कान में लगावे पड़ते है तो व्यस्त हो जाते,
0: कान में लगावे पड़ते है तो मैसेज आवा तो रिप्लाई दे दो, अब जब मैसेज आवे के रिप्लाई के फिर इंतजार करो, तब तक आप काम करो।
1: तो श्रोता सखी बात हो तो हमरे सखी से हम एक्सेप्ट कर लिया, ये गलती हमारे भवा है, काहे से हम जब व्यस्त हो जाए थे तो जवाब न दे पा, लेकिन इनके प्रश्न हमरे मैसेज कहाँ है ये अभी हम इनसे पूछे बाकी है, लेकिन हमरे सखी कहत नहीं है, जब दुई जना कहीं मिला जाता या महसूस हो जाता है कि हमारे सखी थिर कहूँ है नहीं, कहूँ है मतलब हमका महसूस होक चाहिए कि हमार सखी यही थी हैं। जब दुई जना के दिल मिलत है तो आदमी का महसूस तो हो ही चाहिए। जैसे अच्छा। मान ली हम कमरा के बाहर हन तो हमारे सखी का पता नहीं चलत है, हम कमरा के बाहर हमका फोन करते थे सखी काहे नहीं आई हो, जल्दी आओ, तो ऐसे होत है।
0: लेकिन ये बात है जैसे हाँ। बात तो है लेकिन एहसास हो जाते हैं
1: लोग कहाँ से कहाँ
0: विश्वास विश्वास भी ना लगता है। सुनो ना, विश्वास भी ना लगता है कि मने कि नहीं सखी ना आई हुई है। आप कहो कि अब सखी एक घंटा के बाद देवे तो हमका कहाँ लगा ये घंटा के बाद, मगर सखी हम महसूस करे रहे हैं आपका
1: ये बात
0: है। हाँ, कि आप खाली हमका बकावत हो,
1: बकावत हो। दूसर उदाहरण भी है हमारे पास।
0: अच्छा।
1: हाँ, दूसर भी है कि रास्ता चलत सखी हमार चली गई हमारे साइड से लेकिन हमका चीन नहीं पाए
0: लेकिन एहसास हुआ रहा हमका थोड़ा सा
1: वो एहसास हुआ रहा है
0: लेकिन ये पता नहीं रहा है कि आप हमका गोरा मतलब आवाज आवत रहा है सखी, तो हम पीछे मुड़ के देखें तो हमका
1: नहीं। ठीक है, आप लोग कार्यक्रम सुना जाते हैं, पहचान करा
0: जाए
1: उनका भी नहीं, हम सोचा आप पहचान करा जाए कि हमारे सखी सब जगह महसूस करी ना है, सब जगह उनका एहसास भवा रहा है लेकिन फिर
0: आज पता है, आज सपनों देखा रहा है हम। हाँ, अब हो सकता है कल हम आपका पुकारे रहे हो तो हम सुने तो लेकिन हम देख नहीं पाए,
1: बस यही चीज हो तो जैसे सपनों में आपका लगा रहा है कि हम पुकारे आप सुने नहीं। ऐसे रास्ता चलत भी आप चली जाती हो, आपका देखो कि हाँ सखी जाती बुलाई उससे पहले सखी हमार चली जाती, तो ऐसे होते घटना, एक घटना कहा जाता है, मन मिलत है लेकिन का होते जब कोई अपने नजदीकी इंसान सामने से गुजरत है या चीन नहीं पावत है चला जाता है तो मन थोड़ा खिन्न हो जाता है, देखो हमारे सखी तिर चली गई एक चक्कर बुलाइन भी नहीं।
0: लेकिन सखी देखो
1: आप पहले हमारे बात तो सुन लो, हम आपका वो नहीं कहा जाते, हम कहे चाहते कि ऐसा समय हो ही जाता है जो हम लोगों के अंदर गलत फहमी दिमाग में नकारात्मक सोच आए जाते
0: यही लगते कि शायद हमका देखी नहीं है और अनजान बन गई है ना इस तरह। लेकिन अगर ये बात रहा तो फिर अगर जिसे हम देखे तो फिर बोले चाहिए, इसी बात नहीं है लेकिन हम देखबे नहीं किए रहा।
1: हाँ, बात तो कोई बात नहीं है, बात वही जगह नो छोड़ दिया गा छोड़ लेकिन श्रोता सखी ये हमारे दुजना के झगड़ा और डिस्कस ये के मारे लंबा करा गा है कि सखी के हमार सल्ला हो चुका है, बस आप लोग का भी जनावे चाहा जाते कि आप लोगन के दोस्ती में भी ऐसे दरार न आवे।
0: हाँ, अगर सिकवा सिकावा मतलब सिकवा शिकायत है अगर तो आप प्रश्न बोल दिया जाए,
1: प्रश्न लड़के बोल लिया
0: जाए,
1: वही जगह
0: दिल में गिला ना रह जाए और अपन जो है दोस्ती बरकरार रहे।
1: यही बात पर दोस्ती के ऊपर कुछ गीत संगीत हमारे सखी सुनाए दे है की अश्रोता आप लोग भी जाने जाते की हमारे सखी हम दुई जना के उद्देश्य का है की ऐसे दोस्ती में छोट छोट बात से दरार पड़ जाते, बचपन से खेला जाते साथे रहा जाते हर चीज एक दूसरे के बारे में जाना जाते, लेकिन एक चुनौती भी हो जाता है, काम भी होते हैं, जिम्मेवारी कोई कोई का ऐसा बढ़ जाता है कि बेचारा काम समय ना निकाल पावत है, जिसकी वजह से अगला दोस्त क्या सोचता है हमरे खातिर एक मैसेज ना लिख पावे, हमरे खातिर एक फोन ना कर पावे, ऐसा कौन दोस्ती, तो ऐसे होते हैं जैसे जिसकी वजह से दोस्ती थोड़ा दूरी बढ़े लागत है।
0: हाँ, वही हमारे एहसास दिलावे के खातिर
1: अब हम अपने सखी का रोज
0: संजाल
1: चाहे ये देखें चाहे ना देखें। हाँ। इनका पहले हम मैसेज करके चाहे ये करिए तब तक हम सोई जावा करबे लेकिन हम करबे जरूर।
0: नहीं, ऐसी बात नहीं है, अगर हमका मौका मिले सबसे पहले हम इन करी थे, और अगर आपका मौका मिला तो आप
1: नोकझोंक बढ़ गवा गया सके कुछ सुनाए दोगे संगीत।
0: ठीक है सखी, पहले व्यापारिक विश्राम चला जाए।
1: ठीक है, चला जाए।
2: ओहो, हामी बिरामी भएपछि कहाँ जाने त?
3: तपाईलाई थाहा छैन, नेपालगञ्जको शीतलनगर 10 त्रिशक्ति मन्दिरको सामुन्ने खुलेको छ नि चौधरी सरकार बक्स पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक प्राली।
2: हो र, त्यहाँ सुविधाहरू के रहेछ त?
3: एउटै छातामुनि विभिन्न सेवाहरू रहेको छ नि, जस्तै डाक्टर संकेत रिसाल फिजिसियन एवं पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ, डाक्टर उर्मिला पराजुली रिसाल स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डाक्टर आरके झा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ, डाक्टर दिनेश कुमार चौधरी नाक कान घाँटी एवं टाउको रोग विशेषज्ञ, प्रेक्षा सिंह चौधरी एकुपंचर पद्धतिबाट ठीक हुने रोगहरू हात खुट्टा नचल्ने, मुख बाङ्गो हुने, बाथ रोग, ढाड दुख्ने, मूर्छा पर्ने र नसा सम्बन्धी सबै रोगहरूको उपचार गरिन्छ।
2: अनकल सेवाहरू
3: नवजात तथा बाल रोग विशेषज्ञ, मृगौला तथा मूत्र रोग विशेषज्ञ, हाड जोड्नी अर्थोपेडिक सर्जन तथा नसा रोग विशेषज्ञ, प्याकेजमा हेल्थ जाँच गर्ने सुविधा पनि रहेको छ, प्याथोलोजी, भिडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, कानको सुन्ने शक्ति थाहा पाउनको लागि अडियोग्रामका साथै रगत, दिशा पिसाब, खकार, थाइराइड, बायोप्सी, कल्चरका एवं सबै प्रकारको हार्मोनको जाँच गरिनुको साथै औषधि सुविधा पनि उपलब्ध रहेको छ।
4: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म, दिउँसो 3:30 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म डाक्टर दिनेश कुमार चौधरी, नाक कान घाँटी यौँ टाउको रोग विशेषज्ञ, बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म, दिउँसो 3:30 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म, शनिबार बिहान 8:30 बजेदेखि दिउँसो 1 बजे।

0: Mania. Extreme energy drink.
1: पिछले सारे फिल्म लगाए जो हमार पिया, पिछले सारे फिल्म लगाए जो हमार पिया।
2: रेडियो कृष्ण सार FM 94 मेगाहर्ट्ज़, कृष्ण सार जस तेज़।

0: California. Extreme energy drink.
1: Beer Dental.
2: नेपालगंज शहरमा संचालित अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न बीर डेन्टलमा दाँत तथा मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार काठमाडौँ तथा भेरी अञ्चल अस्पतालका अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आरके लामिछानेद्वारा उपचार गरिन्छ।
3: डाक्टर लामिछानेद्वारा गरिने विशेष उपचारहरू: दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
2: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक, भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
3: फोन नम्बर 081-532-375। नेपालकै एकमात्र अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा। सन् 2016 डाक्टर लियोनार्ड लिङ्को फाउन्डेसनद्वारा बेस्ट डाक्टर अवार्डद्वारा सम्मानित डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठ, एनएमसी 19393, बिडिएस दिल्ली, एफएजिसी मणिपाल, सर्टिफाइड इम्प्लान्ट एन्ड लेजर डेन्टिस्ट्री अमेरिका, सर्टिफाइड बोटक्स एन्ड फिलर स्पेसलिस्ट युरोप, एडभान्स सर्टिफिकेट इन जेनरल डेन्टिस्ट्री क्यानाडा, मिनी रेजिडेन्सी इन इन्डो डेन्टिक्स साउथ कोरिया, यी विभिन्न देशहरूमा अध्ययन गरेका डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठद्वारा उपचार गरिने अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा।
2: विशेषताहरू: दुखेको दाँतहरू जराबाट नै भरेर नदुख्ने बनाउने, बच्चाहरूको दुखेको दाँत जराबाट भर्ने, किरा लागेको दाँतलाई भर्ने, दाँत निकाल्ने, दाँतमा खोल लगाउने र दाँत नभएको ठाउँमा दाँत हाल्ने, मेटल क्राउन, बाङ्गो दाँतलाई तार बाँधेर सिधा गर्ने, वृद्ध अवस्थामा भएको बुढाबुढीको पुरा दाँतको सेट लगाउने, दाँतलाई प्रत्यारोपण गर्ने, चाउरी परेको अनुहारलाई राम्रो पार्ने, आँखा तल खाल्टो भएकोलाई भर्ने, सबै उपचारहरू दूरबिनबाट गरिने, डिजिटल एक्सरे सेवा।
4: सम्पर्क गणपति क्लिनिक, सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज नर्सिङ होम नजिकै कुसुम पेट्रोल पम्पको सामुन्ने, पासङलाम रोड जाने बाटोमा। फोन नम्बर 081-531-366 र 98-085-49-451।
5: हाय रे दिदिया, हमार टिहुनी बहुत पीरा थे, बहुत दवाई कराए डाले, नाई ठीक आते।
6: सुनो बहनी, खुशी के खबर, कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जात है। और हुआ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिस, हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फीसर भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग, ब्रिय और अंडकोष और मर्दांगनी के कमी हुए समस्या साथेन कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जात है। और जानत हो, हाथ गोड़ करिहाव, रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाप, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथेन प्लास्टर बांधा जात है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथेन ऑपरेशन किया जात है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
7: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल कैंसर, मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, हार्ट जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ।
6: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सुर्खेत रोड, आदर्श नगर, नेपालगंज 10, बांके, वन कार्यालय के नेरेन, पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 081-531-000।
7: आज यहाँ कहाँ भटकत हो?
8: आम और फल के बिरवा खरीदे खातिर परेशान हैं।
7: परेशान हो कोई बात नहीं है, प्रभात नर्सरी फार्म जोन भवनियापुर 14 में यहाँ है, जिके प्रोपराइटर हैं प्रभात कुमार चौधरी, और उनके फार्म के संपर्क स्थान है जिला हुलाक कार्यालय के पछाड़ी त्रिशक्ति मारवाड़ी मंदिर के सामने चौधरी सरकार बक्स पोली क्लिनिक है। हुआ तमामन मेर केर आम केर बिरवा, दशहरी, चौसा, बम्बैया, अमरपाली, नीलम, मलिका, गुलाब खास और फल मैया, लीची, अमरूद, कटहर, केला, अनार, अंगूर, नाशपति जस सब मेर केर आम और फल के बिरवा के संगे लकड़ी के खातिर सागवन जस बिरवा उचित दाम में यहाँ मिलत है। सैगर खरीदे पर यहाँ विशेष छूट के व्यवस्था है।
8: तब तो हम हो जाइबे और दूसरे को बताइबे।
7: संपर्क नंबर है 98-487-27-916।
9: नेपालगंज का लागि सुपर स्पेशलिटी विशेषज्ञ सेवा सहित आएको छ शिखर हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर प्राली। हाम्रा सेवाहरू अनुभवी तथा विशेषज्ञ चिकित्सकको साथमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार र परामर्श। गम्भीर मृगौला रोग, डायलिसिस व्यवस्थापन, मृगौला संक्रमण, पत्थरीको निदान तथा उपचार, सुगर र उच्च रक्तचापको उपचार व्यवस्थापन तथा मृगौला प्रत्यारोपण तयारी र निगरानीको लागि पश्चिम नेपालमा एकमात्र डिएम नेफ्रोलोजिस्ट डाक्टर सौरभ सिंह हमाल। एपेन्डिक्स, पित्त थैली, आन्द्रा, कलेजो सम्बन्धी समस्याको उपचार तथा दूरबीनबाट अपरेशन सेवा, पेटको क्यान्सरको शल्यक्रिया र इन्डोस्कोपी कोलोनोस्कोपी जाँचका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट आउनुभएको एमसिएच ग्यास्ट्रो तथा हेपाटोबिलेरी सर्जन डाक्टर प्रदीप थापा। नवजात शिशु तथा बाल रोगको उपचारको लागि कान्ति बाल अस्पताल काठमाडौँमा पूर्व कार्यरत डाक्टर प्रतिमा खड्का। प्रसूति तथा स्त्री रोगको उपचार तथा शल्यक्रियाका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट आउनुभएकी डाक्टर प्रेरणा मल्लिक। साथै गुणस्तरीय प्रयोगशाला, इन्डोस्कोपी जाँच, इसिजी, इइजी, एनसिभी, एक्सरे तथा भिडियो एक्सरे जाँचका साथै सम्पूर्ण किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरूको विशेषज्ञ डाक्टरबाट गुणस्तरीय उपचार र परामर्शको सुविधा रहेको छ। सम्पर्क शिखर हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राली, भेरी अस्पताल अगाडि रामलीला मैदान जाने बाटो, रोयल क्याफे भएको बिल्डिङ, नेपालगञ्ज। सम्पर्क फोन नम्बर 081530220 र 9981546979, 081530220 र 9981546979।
10: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
11: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
10: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
11: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केन्द्र प्राली, नेपालगञ्ज छ, फुलटेग्रा, आर्मी ब्यारेक के सामने, राप्ती रोड, बाँके। संचालक पूरन चौधरी। सम्पर्क नम्बर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697।
12: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
3: नेपालकै एकमात्र अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा। सन् 2016 डाक्टर लियोनार्ड लिङ्को फाउन्डेसनद्वारा बेस्ट डाक्टर अवार्डद्वारा सम्मानित डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठ, एनएमसी 19393, बीडीएस दिल्ली, एफएजीसी मणिपाल, सर्टिफाइड इम्प्लान्ट एन्ड लेजर डेन्टिस्ट्री अमेरिका, सर्टिफाइड बोटक्स एन्ड फिलर स्पेसलिस्ट युरोप, एडभान्स सर्टिफिकेट इन जेनरल डेन्टिस्ट्री क्यानाडा, मिनी रेजिडेन्सी इन इन्डो डेन्टिक्स साउथ कोरिया, यी विभिन्न देशहरूमा अध्ययन गरेका डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठद्वारा उपचार गरिने अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा।
2: विशेषताहरू: दुखेको दाँतहरू जराबाट नै भरेर नदुख्ने बनाउने, बच्चाहरूको दुखेको दाँत जराबाट भर्ने, किरा लागेको दाँतलाई भर्ने, दाँत निकाल्ने, दाँतमा खोल लगाउने र दाँत नभएको ठाउँमा दाँत हाल्ने, मेटल क्राउन, बाङ्गो दाँतलाई तार बाँधेर सिधा गर्ने, वृद्ध अवस्थामा भएको बुढाबुढीको पुरा दाँतको सेट लगाउने, दाँतलाई प्रत्यारोपण गर्ने, चाउरी परेको अनुहारलाई राम्रो पार्ने, आँखा तल खाल्टो भएकोलाई भर्ने, सबै उपचारहरू दूरबीनबाट गरिने, डिजिटल एक्सरे सेवा।
4: सम्पर्क गणपति क्लिनिक, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज, नर्सिङ होम नजिकै कुसुम पेट्रोल पम्पको सामुन्ने, पासङलाम रोड जाने बाटोमा। फोन नम्बर 081531366 र 98085449451।

0: मेगाहर्ज कृष्णसार जतिको तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे के रहा है कहाँ जाई तो ठीक रही तनी बताए दियो हमका
4: सुना जाए आपका हम बताई थे आप नेपालगंज में हैं अपने घर के खातिर ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब प्राली में यहाँ जावा जाए हुआ पर यहाँ आर्डर के अनुसार बेड सोफा डाइनिंग टेबल ऑफिस टेबल ड्रेसिंग टेबल दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है उके साथे टिकाऊ सामान आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जात है
3: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथे आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है
4: एक दफी सेवा करे मौका दीन जाए संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके संपर्क नंबर 9844885375 और 9808245437

0: Telefonia. Extreme energy drink.
1: हरेक अभिभावकको सपना हुन्छ आफ्ना छोराछोरीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन्, सुरक्षित वातावरणमा सिकुन् र उज्जवल भविष्य निर्माण गरून्।
2: त्यही सपना साकार पार्दै आएको छ नेपालगञ्ज 18 बाँकेमा अवस्थित एक उत्कृष्ट शैक्षिक संस्था स्प्रिङडेल एकाडेमीले।
1: आधुनिक प्रविधि मैत्री कक्षा, अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट सिकाइ वातावरण, विज्ञान तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला, अतिरिक्त क्रियाकलाप र अनुशासित शैक्षिक संस्कार स्प्रिङडेल एकाडेमीको विशेषता हो।
2: ब्रिटिस काउन्सिलद्वारा प्रदान गरिएको इन्टरनेसनल स्कुल अवार्डले विद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शैक्षिक गुणस्तर प्रमाणित गरिसकेको छ। यहाँ पढाइसँगै व्यवहारिक ज्ञान र आत्मविश्वास पनि सिक्न पाइन्छ।
1: नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा 11 विज्ञान व्यवस्थापन र मानविकी संकायमा भर्ना खुला गरिएको छ।
2: सिट सीमित भएकाले आजै आफ्नो भर्ना सुनिश्चित गर्नुहोस्। गुणस्तरीय शिक्षा, सुरक्षित वातावरण र उज्जवल भविष्यको भरोसा स्प्रिङडेल एकाडेमी।
1: ठेगाना नेपालगञ्ज 18 बाँके। सम्पर्क फोन नम्बर 98582973।
3: भैया, बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं। कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
4: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे। बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
3: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया?
4: सुनो, हुआ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यो गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
3: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज ही कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता कह के तहे दिल हुआ जाए।
4: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ। संपर्क नंबर 97649 11786, 98224 92377।
5: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
6: सोचे भन्दा सस्तोमा हाई क्वालिटी का सोफा र फर्निचर चाहियो, आउनुहोस् सोफा हब नेपालगञ्ज।
7: हरेक सामानको खरिदमा 1000 देखि 20000 सम्म छुट, 10 देखि 15 वर्ष सम्मको वारेन्टी, साथै फ्री डेलिभरीको सुविधा पनि। अहिले थमाथम बिक्री भइरहेको छ।
6: स्थान राजा चोक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अगाडि।
7: सम्पर्क 97051148470।
6: सोफा हब नेपालगञ्ज,
7: विश्वासमा नम्बर 1,
6: क्वालिटीमा सबैभन्दा बेस्ट।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज
1: कार्यक्रम घर अंगना के अंतर्गत शनिचर के दिन
2: स्वास्थ्य शिक्षा आयुर्वेदिक नुस्खा सहित घर अंगना में हम लोग आवाज आई
1: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज से देखा भी जाए और सुना भी जाए।
3: दिन भर चाहे जहां रही हो हमार पिया
2: शनिचर के दिन और साथ ही हमार सखी चंदा
1: और हमार सखी संध्या कार्यक्रम घर अंगना
4: घर अंगना।

से ऊपर कोठरी, ऊपर से उतरी छोकरी। यारो ये तूफान मेल है या आफत की टोकरी।

0: सखी
1: हाँ सखी
0: रेल वाला बात तो अभी हम लोग का मतलब कहा जात रहा है, लेकिन पाठक जी जो फोन करी ना है गीत संगीत ज्यादा दिन के बाद सुना गया है गीत संगीत, तो बहुत चर्चित गीत रहा है ये पहले
1: हाँ,
0: भी
1: हाँ, पहले है गाना बजत रहा है वाला।
0: लेकिन हम लोग कहा जात रहा है फिर से आपका मतलब उनका बहुत बहुत धन्यवाद है जो ये गीत के बोल बताए हम लोग फिर से गीत सुन के तरोताजा हो गएगा। हम लोग नान नान रहे तो भी गीत बहुत चारों तरफ
1: मजा
0: करता रहा है। और आप भी अभी कह रहे हो रेल कस के चलावा जी कोठे के ऊपर,
1: अब पता तो चल गया,
0: पता चल गया है। पाठक जी का जो भी सुनने वाले साथी रहे घर परिवार का नाम लिखना जरूर आप लोग सुना गा हुई, तो धन्यवाद है आपका जो फोन करा जाता है सहभागी हुआ जाता है, तो ऐसे सहभागी होते रहा जाए, अभी कुछ समय बाकी है हाँ फोन करा जाए साथी लोग और कार्यक्रम में सहभागी हुआ जाए।
1: तो सखी नंबर तो बता दिया जाए।
0: अरे तो नंबर बताओ कतिर आप साक्षात बैठी हो, आपका बेर बेर कहा करी थी कि नंबर बीच बीच में बताई दियो सकी, लेकिन आज अब हमारे लोग इतना नोक झोंक हुई हुआ है कि
1: तो ठीक है बताई दिया जाए ना।
0: हाँ बताई दिया
1: हाँ, तो साथ ही आप लोग फोन लाइन से जुड़ा जाए 081-415-122 081-415-122 के लाइन पे आप लोग आवा जाए। और जो पड़ोस भारत के जो साथी लोग हैं उन लोगों के खातिर 00977-81-415-122 के लाइन पे आवा जाए। कोई साथी आवे के प्रयास माँ है सखी है ना, लेकिन हाँ। टुन्ने से बोला है और फिर पुण्य से चले गए,
0: हम लोग के दिमाग भी फोने के तरफ है
1: हाँ।
0: और ये समस्या का हो जाते कि
1: आएगा
0: समस्या
1: इससे पहले टुन्ने से
0: के भी रहा,
1: अब आएंगे कोई साथी बात करा जाए।
0: ठीक है तो स्वागत करा जाए। नमस्कार।
2: हेलो नमस्कार दोनों जना सखी लोगन का।
1: नमस्कार नमस्कार
0: नमस्कार, आप दोनों कहाँ से बोला जाते है फिर से नमस्कार।
2: अरे हम यहाँ जानकी गांव पालिका बुढ़िया गांव से साकिर खान बोली थे मैडम।
0: अच्छा आप बुढ़िया गांव से बोला जाते हैं, वैसे भी हम एक बार पूछे भी रहे कि गांव के नाम कसके परा बुढ़िया गांव, वैसे तो आप हमरे मतलब साथी परागा विद्यालय परिवार के परिवार परागा है। जरूर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है फोन करे खातिर, वैसे आज हमारे लोग के जत्ते कोई फोन नहीं करते तत्ते यहाँ झगड़ा बढ़त चला जाता सर।
2: अरे झगड़ा तो हमका लोगन मजा लागत है मैडम।
0: हाँ तो आप लोग मजा ले हमारे लोगन के यहाँ खोपड़ियाँ
1: सजा हो जाते हमारे लोगन के झगड़ा करते करते
2: खत्म। अरे वही सजम तो हम लोग बहुत चीज सीख पाई थे।
0: ये बात तो है की हम लोग के जो भी झगड़ा करा जाते उमा भी कोई ना कोई संदेश रहा थे। तो और क्या हाल चाल है आपके?
2: बढ़िया है, तनिक तबीयत ना ठीक रहे मैडम, सर्दी जुकाम है, कोनो हम टिप्स उप्स बतावा जाए, खांसी वांसी आवत है।
0: सर्दी जुकाम है आपका मतलब ये गर्म मौसम में सर्दी जुकाम है आपका, तो जरूर आप कुछ ना कुछ लापरवाही करागा होई, जैसे कि ठंडा पानी पियागा होई है नी,
1: घाम
0: आइसक्रीम ज्यादा खावागा होई, कोक ज्यादा पियागा होई, कुछ
2: ठंडा तो... पानी तो ना मैडम, मगर एसी में 2 दिन लेट गेन बा वही से लोट गेन।
0: अच्छा एसी से, तो एसी का भी जैसे मान लो ज्यादा तापक्रम ज्यादा ठंडा होएगा तो नुकसान करा था हमारे का, या तो बंद कर दिया जाए या तो उसका कुछ कम कर दिया जाए।
2: मेहमान में गैर हन हुए परिगन हुए को जो सर्दी होएगा मैडम।
0: तो ठीक है कोई बात नहीं है, सखी हम लोग के पास टिप्स और नुस्खा बहुत है।
1: हाँ बहुत है उसके उपयोग किया जी है ना।
0: हाँ बताए थोड़ा सा अटकट में छोटा आपका हम बता सकी थे, सबसे पहले तो आप गुनगुना पानी पिया जाए।
2: हाँ मैडम।
0: गले में ज्यादा खराश है तो हल्का सेंधा नमक डाल के कुल्ला करा जाए, या फिर पानी गुनगुना नमक सहित पी सका जाते है नी, अंदर के खखार निकालत है। और उसके बाद आप काढ़ा पिया जाए, काढ़ा गुड़ के पिया जाए, जैसे गुड़ है लवंग इलायची काली मिर्च अदरक मसाला वाला चाय काढ़ा पिया जाए। और काढ़ा अस बनावा जाए कि जैसे एक गिलास चाय बनावा जाते तो उसका जराई के आधा कर लिया जाए। तो ये
2: बहुत धन्यवाद मैडम जानकारी के लिए।
0: हाँ अब गीत संगीत कौन सुने चाह जाते है, किका सुनावे चाह जाते है?
2: अरे गाना सुना चाहते हम अपने साथी रब्बान का जमील खां का।
0: अच्छा
2: और हमार सीता बीका बहनी सीता भंडारी बहनी।
0: अच्छा
2: और हमार महतारी हैं उनका सुनावे चाहित है।
0: अच्छा तो ठीक है जरूर, और कोई बचा है कि?
1: अब
2: और बचा है हमरे राजेंद्र भैया हैं।
1: सोच के बतावा जाए
0: मतलब ये सोच के आप बता रहे हो है?
2: सोच के ना बताए जो मनमा है वही बताई थे।
0: हाँ वो मन के बात तो आज ना करा जाए, मन से तो आज झगड़ा हुआ है
2: खाली आप ही बोला जाते सखी तो बोलते
0: ऐसा की आपने जो नहीं तो फिर इधरों ना हमारे कुछ हो ही लागे।
1: नहीं वो बात तो है सर, मतलब का है कि आप सोच के बोला जाते है ना कि मन में जो है वही बोला जाते
2: ना ही समझी थे तब सोची थे।
1: हाँ समझा
0: था तो, तब सोचा
1: हाँ सोचा थे याद कर करके कि किका किका सुनाई। अच्छा हम दोनों सखी का सुनावा जाए कि नहीं?
2: आप भी जना तो सुनबे करिए तो सुना जे जरूर
0: नहीं जरूर
1: नहीं नहीं अगर आप लोग आप नाम ले लिया जाए हम दोनों सखी के तब हम लोग सुना जाए अगर ना लिया जाए नाम तो ना सुना जाए
0: आवाज बंद कर दिया जाए ना
2: दोनों जना सुना जाए पूरे एफएम परिवार लोग सब कुछ सुना जाए
1: चलो ठीक है सखी अब तब सुना जाए
0: लेकिन गीत के बोल का है
1: हाँ गीत के बोल का है
2: गाना के बोल है तुमसे मिले बिन चैन नहीं आता मैं क्या करूं
0: मैं क्या करूं ठीक है तो आप अभी सुने पावा जाइए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है
2: आपका भी दोनों जना सखी लोग का धन्यवाद ऐसे कार्यक्रम सुनावा जाए जानकारी दिया जाए
0: ठीक है आपके सुनने वाले संपूर्ण साथी लोग इस बजे वाला गीत संगीत जरूर सुनिए आशा करी थे और हम लोग भी कान खोल के सुना जाए और हमारे सखी भी सुनिए और वैसे भी सखी हमारा अगर गीत उधर से बजाइए ना तो हम लोग सुनेंगे ना पावा जी
1: नहीं बजेबे ऐसी बात नहीं है सुना जाए सब कोई सुना जाए तो आखिर सर कही थी ना कि हम लोग भी सुना जाए
0: हाँ
1: तो हम लोग भी सुना जाए अगर ना कही थी तो फिर आवाज
0: धन्यवाद दिया जाए विदा लिया जाए ध्यान से सुनते रहा जाए
2: धन्यवाद नमस्कार
0: ठीक है नमस्कार
1: नमस्कार तो सखी
0: हाँ सखी
1: हाँ तो गाना के बोल कह रहा है आप बताओ
0: तुमसे मिलने बिना चैन नहीं आता
1: तुमसे
0: है
1: मिलने बिना कि तुमसे मिले बिना
0: मिले बिना
1: अच्छा लो ठीक है और का
0: हाँ, अच्छा सही तो,
1: सही है
0: सबका तो घर परिवार तो कहा नहीं कोई भी काम घर से शुरुआत होता है तो घर परिवार के तो सुनबे करी है और हमारे लोग के घर परिवार में कत्ता सुनी है जब हमारे लोग की लड़ाई अगर घर परिवार में शुरू रात हुई है तो परेशान हो जात हुई है सोचत हुई है कुछ देर कतिर चली गई है ये लोग तो शांति चाहिए है नहीं वही भी सकत
1: हाँ,
0: है
1: तो।
0: लेकिन आप लोग परेशान न हो जाए आप लोग इनका हफ्ता में एक दिन खाली हम लोग परेशान करा जाते हैं वो 3 घंटा परेशान करा जाते हैं तो हमने सखी गीत संगीत सुनावा जाए कि मतलब कोनो तरफ जावा
1: जाए अभी कोनो तरफ जावा जाते हैं व्यापारी विश्राम की तरफ
0: अच्छा तो श्रोता और सर जो आप फोन करा कर साकिर सर आप भी सुनते रह जाए विज्ञापन के बाद वही गीत संगीत के साथ ही फिर हम लोग कार्यक्रम में उपस्थित हुए
1: ठीक
3: ओहो हामी बिरामी भएपछि कहाँ जाने त
4: तपाईलाई थाहा छैन नेपालगञ्जको शीतलनगर 10 त्रिशक्ति मन्दिरको सामुन्ने खुलेको छ नि चौधरी सरकार बक्स पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक प्राली
3: हो र त्यहाँ सुविधाहरू के रहेछ त
4: एउटै छातामुनि विभिन्न सेवाहरू रहेको छ नि जस्तै डाक्टर संकेत रिसाल फिजिसियन एवं पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ डाक्टर उर्मिला पराजुली रिसाल स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर आरके झा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर दिनेश कुमार चौधरी नाक कान घाँटी एवं टाउको रोग विशेषज्ञ प्रेक्षा सिंह चौधरी एकुपंचर पद्धतिबाट ठिक हुने रोगहरू हात खुट्टा नचल्ने मुख बाङ्गो हुने बाथ रोग ढाड दुख्ने मूर्छा पर्ने र नसा सम्बन्धी सबै रोगहरूको उपचार गरिन्छ
3: अनकल सेवाहरू
4: नवजात तथा बाल रोग विशेषज्ञ मृगौला तथा मूत्र रोग विशेषज्ञ हाड जोड्नी अर्थोपेडिक सर्जन तथा नसा रोग विशेषज्ञ प्याकेजमा हेल्थ जाँच गर्ने सुविधा पनि रहेको छ प्याथोलोजी भिडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे इसिजी कानको सुन्ने शक्ति थाहा पाउनको लागि अडियोग्रामका साथै रगत दिसा पिसाब खकार थाइराइड बायोप्सी कल्चरका एवं सबै प्रकारको हार्मोनको जाँच गरिनुको साथै औषधि सुविधा पनि उपलब्ध रहेको छ
5: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म दिउँसो 3:30 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म डाक्टर दिनेश कुमार चौधरी नाक कान घाँटी एवं टाउको रोग विशेषज्ञ बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म दिउँसो 3:30 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म शनिबार बिहान 8:30 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म
4: सम्पर्क फोन नम्बर 081-533-719 98-480-22-229 र 98-605-22-229
6: कुष्ठ रोग अभिशाप न होए इके उपचारो भी संभव है वही से कुष्ठ रोग के बारे में हम सब लोगन के यहाँ जानकारी पावे जरूरी है
7: शरीर में यहाँ न खजवाए छुए से जान न मिले लाल और खर्रहा दाग दिखाए तो कुष्ठ रोग के शंका कई सका जाते है असल लक्षण अपनक या तो दूसरे के यहाँ दिखाए तो जुड़ती स्वास्थ्य संस्था में यहाँ जाए के जाँच करावा जाए सब स्वास्थ्य संस्थान में यहाँ कुष्ठ रोग के दवाई निःशुल्क मिलत है
6: समय में यहाँ उपचार यानी दवाई किए से कुष्ठ रोग पूर्ण रूप में यहाँ नीक होए के साथ शारीरिक अपांगता होए से भी बच सका जात है
7: जानकारी रहक चाहे कुष्ठ रोग बीमारी से प्रभावित और उनके परिवार के यहाँ भेदभाव करब कानूनी अपराध हो साइनिंग अस्पताल INF नेपाल बाके द्वारा जनहित में जारी संदेश।

वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 9805532568।

0: Bunnia. Extreme energy drink.
1: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
2: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा होए के साथ हैं, तमाम मेर के सेवा होता रहा जानकारी करावा चाह जाता है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: शुगर ब्लड प्रेशर हृदय रोग पेट छाती कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
2: वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवेग जानकारी भी करावा जाता है।
1: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
2: संपर्क नंबर 081536434 65 98239 80665।

0: रे दीदिया, हमार टिहुनी बहुत पीरा थे, बहुत दवाई कराए डाले, नाई ठीक थे।
1: सुनो बहिनी, खुशी के खबर, कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जाता है। और हुआ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिस, हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फीसर भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग, ब्रे और अंडकोश और मर्दांगनी के कमी हुए समस्या साथ कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जाता है। और जानत हो, हाथ गोड़ करिहाव, रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाव, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथ प्लास्टर बांधा जात है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथ ऑपरेशन किया जात है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल कैंसर, मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, हार्ट जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ।
1: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सुर्खेत रोड, आदर्श नगर, नेपालगंज 10, बांके, वन कार्यालय के नेरेन, पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 081-5-31000।
3: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाख को बीमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता, सूर्य ज्योति सही प्लान,
4: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवन को लागी

0: खुल्यो खुल्यो खुल्यो
1: तपाईको आफ्नै शहर कोहलपुरमा टिभीएस शोरूम खुल्यो।
0: स्टाइल, पावर र भरोसा अब एकै ठाउँमा
1: कोहलपुरमै पाइन्छ। टिभीएस का नयाँ बाइक र स्कुटर, दमदार परफर्मेन्स र उत्कृष्ट माइलेज का साथ सेल्स सर्भिस र स्पेयर्स, सबै सुविधा एउटै छानामुनि, साथमा फाइनान्सको सुविधा पनि।
0: आजै आउनुहोस् नेपाल अटो पार्ट्स एन्ड सप्लायर्स, कोहलपुर 11 बाँकी।
1: हजुर, नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा। सम्पर्क नम्बर 98125 26 711 र 98 20 18 37 86। नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा।
2: अपन स्वास्थ्य के ख्याल रखब सच्चा आत्मविश्वास होए, वही से तो नेपाल परिवार नियोजन संघ बाके शाखा विगत लंबा समय से आप लोगन के सेवा में यहाँ समर्पित है।
3: हमरे यहाँ पूर्ण गोपनीयता के साथन, गर्भपतन, परिवार नियोजन के साधन, बच्चेदानी के मुंह और स्तन कैंसर के परीक्षण और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी परामर्श सेवा उपलब्ध है।
2: विशेष सुविधा
3: अब हरेक इतवार के दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदेश आचार्य के द्वारा विशेष परामर्श और उपचारों भी पावा जाए।
4: देर न कीन जाए, आज स्वास्थ्य परामर्श लीन जाए। पता नेपालगंज उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 9 रामलीला रोड नापी शाखा के अगारी। फोन नंबर 081 5 3 598।

0: सखी।
1: हाँ सखी, अब देखो ना टाइम भी खत्म हो गया है प्रोग्राम के, है ना, एकदम लास्ट में है सखी हम लोग।
0: मतलब बोल ही ना दे हो।
1: नहीं बोलो बोलो ही तो खाली खाली बोलो जल्दी जल्दी।
0: कहती टाइम खत्म हो गया
1: है, जल्दी बोलो
0: तो हम ही लोग बतावा जाते 3 बजे खत्म हो जाओ, खत्म हो वाला है। अच्छा अब संकेत दियो है हमका।
1: हाँ वही बात, लिया जाए। हाँ विदा लिया जाए, बात ही है।
0: कभी कभी सोच थोड़ा उल्टा हो जाते है, कहा ना जाते, नेगेटिव बात बिल्कुल ना करा जी।
1: तो नेगेटिव सोचे लगा
0: कैसे, इंसान के दिमाग कैसा होता है कि हम लोग नेगेटिव पहले सोचा जाते, पॉजिटिव बाद में सोचा जाते। वैसे कोई बात
1: नहीं है, वो भी
0: पूछ पूछ के कोई बात नहीं
1: कर दियो बात
0: कोई बात नहीं है। तो श्रोता आप लोग जाना जाते हैं शनिचर के दिन कार्यक्रम घर अंगनामा 1 बजे से 3 बजे तक सुना जाता है। तो समय के हम लोग अंतिम अंतिम में पहुंच गए हैं और सखी हमका संकेत भी दे थी, कहे से इनके दुई दुई जिम्मेवारी है, ये प्राविधिक में भी काम कर रही है उधर, तो इनका बंधन में ज्यादा बंधी है, हम थोड़ा कम बंधे हैं, लेकिन कहूँ बंध न कही दें इससे अच्छा विदाई लेके चले जावा जाए। तो आप लोग ऐसे कार्यक्रम सुनते रहा जाइए हम लोग के कार्यक्रम का, कमेंट द्वारा लाइक द्वारा जरूर हम लोग का आप लोगन के सलाह सुझाव देते रहा जी, और दिया भी जाते है जिसके कारण से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो हमार सखी कहाँ है, हमार सखी चंदा
1: और हमार सखी संध्या,
0: हम दोनों जना के लोगन के तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और कार्यक्रम से विदा लिया जाता है। अगले हफ्ते नया विषय वस्तु के साथ रेडियो की संसार FM में यही कार्यक्रम यही समय माँ फिर से हम लोग उपस्थित हुई। तो आज के खातिर विदा दिया जाए।
1: नमस्कार, राम राम, राम, राम, शुभ दिन।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 3 बजेको छ.
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक, टेस्ट द डिफरेंस, फील द एनर्जी.

0: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
1: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि।
2: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा, कहाँ जाई तो ठीक रही, तनी बताई दो हमका।
3: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में हैं, अपने घर के खातिर, ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जात है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब पराली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ आर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज जस तमामन मेरे के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथन टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जात है।
2: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथन आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है।
3: एक दफे सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके, संपर्क नंबर 9844885375 और 9809825 4037।
4: नींद ना आए हमको, हाय जग सोता
2: है। व्यवसायिक कृषि पद्धति अपनावे के खातिर कृषक वर्ग के यहाँ कृषि व्यवसायिक प्रवर्धन सहयोग और तालीम केंद्र खजुरा बाके के विशेष अनुरोध।
3: कृषि क्षेत्र में यहाँ व्यवसायिक पद्धति अपनाए के आय मूलक व्यवसाय मार्फत आत्मनिर्भर बना जाए और बनावा जाए। कृषि पेशा के यहाँ मर्यादित बनावे उद्यमशील विकास कई के रोजगारी सृजना करा जाए, करावा जाए। कृषि व्यवसाय में यहाँ तुलनात्मक विश्लेषण कई के आमदनी मूलक व्यवसाय छनौट करा जाए। खेती व्यवसाय के नियमित अभिलेख रख के विश्लेषण करे बानी बैठावा जाए। बाजार देख के मात्र उत्पादन योजना बनावा जाए। व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तैयार कई के कार्यान्वयन करा जाए। सफल उद्यमी बनो, व्यवसाय के यहाँ निरंतरता देव विस्तार करा जाए, करावा जाए। कृषि प्रावधिक विज्ञ लोगन से नियमित सरसलाह और सुझाव लीन जाए और वही अनुसार व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करा जाए, करावा जाए।
2: अकेले प्रयास से कृषि क्षेत्र में यहाँ व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में यहाँ कार्यान्वयन न कई सके कारण से हम लोग निजी और सरकारी सब सरोकार वाला लोग एकजुट होई के अपन अपन भूमिका निर्वाह संबंध में सहकार और प्रयास करा जाए, करावा जाए।
3: तब आवश्यक सलाह और जानकारी के खातिर नेरे के संघीय तथा प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा उपलब्ध करावे वाले कार्यालय, केंद्र, प्रयोगशाला, निर्देशनालय और स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में यहाँ संपर्क रखे खातिर अनुरोध करा जाता है। कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालीम केंद्र खजुरा बांके।
5: बीर डेंटल
6: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दांत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आर के लामिछाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
7: डाक्टर लामिछाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत आउने, पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेँलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्र तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
6: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
7: फोन नम्बर 081 532 375।

0: वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 9805532568
1: बाबा के कान पिरात है दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई
2: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक लोगन से हरेक दिन कान परीक्षण किया जाता है यतन कहाँ यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा जीर्ण रोग कान में ढूसी भवा कान खजुआब कान से कम सुनाई देव कान बंद हो बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा कान के जाली में छेद भवा कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है बीटी सीआईसी आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है
1: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो
2: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे दवाई दरमत संभव है बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 9848020697 9858023697 और 9804483697 बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए
3: छोटो समयमा धेरै संस्थामा डाक्टर इन्जिनियर तथा सिए बनाउन सफल पेन्टागन कलेजमा कक्षा 11 लागि विज्ञान व्यवस्थापन तथा कानून संकायमा भर्ना खुल्यो पेन्टागन कलेज तिनकुने काठमाडौँ
1: भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं कहाँ जाए तो बढ़िया रही
2: हम भी पहले गैस्ट्रिक बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक जगह होते है।

0: स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देत हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता कह के तह दिल हुआ जाए।
1: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ संपर्क नंबर 97649 11786 98224 92377। सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्द और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
2: Back to back. Back to back.
3: In this song on
2: Stay tuned.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
2: टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: खातिर आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतान प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।
1: हाय, के गर्ने होला अब? सुगर पनि बढ्दैछ, थाइराइडको समस्या अझ छुट्टै छ। कति ठाउँमा देखाएँ तर भएन।
2: ए, तिमी यति चिन्तित किन?

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
2: टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
4: नेपालमा पाजेना बिखा साँपनको विषयमा सुन एक ठोर गरैचा जुन खास कैख रातिक समयमा घर भित्र पैठ सेक्ठ यी कटला से निबठाई फे स्याकट तर कटलक पाछ देही भाग जो निचलना कैख सास फ्यार जो निसेकना मेसे लक्वा हुई सेक्ठ और रठ डोम जोन बड़ा रिसाहा मेरिक रठ निकर फाट फुले थ डोम साप दिन वा रात दुनु में देख पड़ना ओ खास कैख संध्या बिहान देख पड़ निकर कटला से फे लक्वा हुई सेक्ठ ओ और रठ कैली जाटक साप निकर कटला कल से कटलक भाग सुई था ओ बड़ा कर्र से बठे था रकट थे पाटी रोकर रकट बहना हुई से था उसने कहा हमारे देशक तराई सबको भूभाग में पा देना बगोक ने न फुनकारना बाघे सांप ई सांप दस लाख बेरहमेन कम केल पा दे था तर हिकन कटाई एकदम खतरनाक रहा
5: बर्खा छा को अनाज बिग्रिना समय में सापन का कटाई अथवा दसाई का घटना ढ्यूर बिना कर था बहिया वो और प्राकृतिक प्रकोप का कारण सापन का बसेरा नाश विभेर सापन का दसाई का घटना ढ्यूर बिना कर लग पा जाए
6: ढ्यूर जसिन सापन का दसाई हानिकारक नी रहा वह फिर यदि सपवा दस डारल कल से तुरंत लगभग उपचार केंद्र में जा जाए पर
7: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैख पट्टा लगाइक लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org मा जाख आवश्यक जानकारी लिए सक जिठा
8: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
9: यो कृष्ण सार एफएम
0: 94 MHz कृष्ण सार जत्तिकै तेज
10: सर्पदंश अथवा सापनका कटाई से बच ओ सापनका कटाई से हुइसेकना मानवीय एवं शारीरिक क्षति विषयमा आम संचार अन्तर्क्रियात्मक रेडियो केन्द्रित अभियान जीवन सन्देश नमस्कार सर्पदंश अथवा सापनक कटाई से बच ओ सापनक कटाई से हुइसेकना मानवीय एवं शारीरिक क्षति विषयमा जनचेतना जगैना उद्देश्य लेख अन्तर्क्रियात्मक रेडियो कार्यक्रम जीवन सन्देश लेख मै पुष्पा
11: ओ मै एकराज आइलबाटी चलन चल्तीको बोलीमा सापनक कटाईकै ख ढुर पर्यो बोलेसे सापनक कटाई हना सर्पदंश फे कना गर्दिठा आज कार्यक्रमका पहिला पैधार आज हाम्रा सापनको कटाइसे बचकलाग सापनको छनछनिक मेयर ओ यी साप सक्रिय हुन समय विषयमा थाहा पाइपर्ना काक्र जरुरी बाकना विषयमा छलफल गर्ने बाटी
10: सापनको छनछनिक मेयर नेपालमा पाजिना बिखा जाटक साप ओ हिकनक सक्रिय हुन समय विषयमा जानकारी दिए आज हमनसेबाट सर्पदंश विज्ञ डाक्टर संजीव कुमार शर्मा
12: हामीले भन्दा गोमनको प्रजाति करेतको प्रजाति र बाघे सर्प रसल्स भाइपरको प्रजातिले चाहिँ मानिसको मृत्यु हुन सक्छ यिनीहरू चाहिँ विशेष गरी तराई भेगमा पाइन्छ
11: यी विषयमा छलफल गर्नलाग आज हाम्रो बर्दिया जिल्लाको बिन्दु व बाँके जिल्लाको होम कुमार सेफे परिचय गरिने बाटी विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत यी दुनुजना आफ्नो अध्ययन व अनुसन्धानको क्रममा तराईक मेरमेरिक ठाउँ वा समुदायमा पुग्न करलक वो सर्पदंशको विषयमा चेतना जगिना करलकबाट सुन्ने बाटी
13: ए होम कुमार अहिलो लेऊ बैठो आज हमार फेसबुक लाइव में सर्पदंश विषय में कौन चाहिए विषय में जानकारी देना हुई कैख तैयारी व अनुसंधान करती रह का
10: हर साल बर्खा छ्याक अर्थात पानी ना समय में सापन का कटाई घटना ठ्यूर हुई ना करता अमिन विशेषकै ख नेपालक तराई भूभागमा असिन घटना ठ्युर हुना कर्था
11: जार छ्याकमा ढ्युर जसिन बिलिक भित्र बैठना साहब बर्खा छ्याकमा बिलीमा पानी भर लगलग पाछ भुइँ मसिन निक्र भिर छ वो वर्षे अस्ने समयमा खासकै ख तराई क्षेत्रमा सापनको कटाई वा वेमसे भुइना मृत्यु विषयमा ठ्युर सुन्दिठा
10: सर्पदंशक दृष्टिकोणले नेपाल बडा जोखिमपूर्ण क्षेत्र मान्जेठा ना ठ्युर गर्मी ना ठ्युर जार हुना ओर्से नेपालक हावापानी सापनका लागि उपयुक्त हुना विज्ञ हुन कहाई बाटन याकरसँग बर्खा छ्याक हुना ओ गर्मी मौसममा पानी पर्ना फे सापनका बसोबासका लागि अनुकूल बना देलबा
11: सर्पदंशक दृष्टिकोणले नेपाल बडा जोखिमपूर्ण रलक ओ सर्पदंशसे पुगाइसक्न भारी मानवीय क्षतिक बावजुद नेपालमा सर्पदंशहन गम्भीर स्वास्थ्य समस्याको रूपमा लेलक निपादैत
10: तर कुछ महत्वपूर्ण बाठन ध्यान देना हो ओ सावधानी अपनैना हो कलशे सापनका कटाइसे बाँच सेक्तिठा अत्रकेल निहोक बिखा साप काठ सेक्लक अवस्थामा फे कटलक मनेहन भुइँमा सुताख ठ्यु हिलनी देख कटलक वा आन्जर पान्जरी भागमा एकुफे निचलाख समयमा चु लगभग उपचार केन्द्रमा पुगाइ सेक बिलकलसे उहिहन बचाइ फे सेकजिठा
11: याकरसँग आफन बसोबास रहल क्षेत्रमा पाजिना सापनको मेयर वा कुन साप कटरा हानिकारक बाकना थाहा पाए सेक गिलकलसे फे सापनको कटाइसे हुइसेकना क्षतिसे बच सेकजिठा आज हाम्रा गाउँघर आन्जर पान्जर डेक पर्ना साप मध्ये बिखा सापन कसिक चिन्ह वा कसिन सापन से कसिक बच्नाकना विषयमा बातचित गर्दैबाटी
10: यस सन्दर्भमा हाम्रा बर्दिया जिल्ला कुछ श्रोता सहभागी हुकन आफन समुदायमा यी मनसुन वा बर्खा छ्याकमा उहाँ हुक्र कसिन कसिन साप देख्ना कर्लबाट कना विषयमा पुछबाटी
14: अरुणा चौधरी हाम्रो बस्तीमा त अन्डिस पहुल केसना जस्तो रठाई अनि करेट डोमिनिया अनि पानी सब पहुल उस्तैका डिरी साप अब घाम महिना लागल अब एक दुई चो झरी परी दाना पानी परी अब ढिला ढिला बर्खा लग ऐना क्रममा जेठ असारो चाहिँ यी साप देखा पर्थे
15: मोर नाउ मनोज थारू धमला सपुवा देरी सपुवा गरैसा ओ मै हरुवा देखा पर्ले कोबरा अत्रैसम्म देख्ले आँटे वैशाख जेठलिङ पहिले चट पानी वर्ष ऊ टाइम से निक्रेक सुरु गर्थ अब यी असोज कार्तिकसम्म सक्रिय रथ है
16: रामदार मार बस्तीमा केटा र फेर थाइन गरैछ र थाइन बुढा गरैछ मजगी डुवा फेर थाइन वैशाख जेठमा चाहिँ जुरकर डेट हाँ निकर्न पानी पर तपसे सुरु कैदे थाइन निकर्न भाडो कार्तिकसम्म र थाइन
17: राम सायन थालु वर्षायाममा नै प्राय जसो साँप देख पर्थ जस्तै कि फिर दारा फेर देख पर्थ गरैछ हाम्रो थारू भाषामा कति करेट देखा पर्थ अनि बाँकी चाहिँ पानी साथ
18: विजय कुमार थारू गरेछ सपो देख पर्छ है फेटारा डेरिसा पनसपुवा मैहार पानी वर्षा टप जस्तै गर्मी अहिले नि बर्खा अहिले ऊ बेलामा भने यी साप देखा परत अब फेटारा साप कबो कबो बेला के देख परत अब यसरी त खासै नै देख पर्छ कबो कबो के देख परत
11: हाम्रो भर्खर सुनली बर्दियाको हाम्रा श्रोता सहभागीमा से कुसमने ढ्युर जसिन देख्ना कलक साप गरैचा कैली जसिन साप होइट कलक कलसे कुसमने साप ढ्युर देख्ना कलसे फेर सापन चिन्ह निसेक्लक बटुल
10: आफ्नो बैठक ठाउँ समुदाय वा क्षेत्रमा पाजेना सापनका प्रकार ओ ऊ साप हानिकारक हुइट कि निहुइट कना विषयमा जानकारी लिन महत्वपूर्ण बा
11: विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुसार नेपालमा करिब 89 प्रजातिक साँप बाधित छ जहीमा से करिब 17 प्रजातिक साँप बिखा वा खतरनाक मान्जे छ सर्पदंशक घटनामा सबसे ढ्युर डुङ ओ गरिचाक डसाइ हुन करलबा
10: गरिचा ठ्युर जसिन राठ खसुटल ब्यालामा ठा निपैना मेर्से डस्ना कर्ठकलसे डोम सामान्यतया दिनख काम गर्न समयमा वा सन्ध्या बिहान डस्ना कर्लक पाजिठा धरानका बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थित सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्रक सर्पदंश विशेषज्ञ डाक्टर सञ्जीव कुमार शर्मक अनुसार पूर्वी नेपालमा डोम ओ पश्चिम नेपालमा गरेचा सापनका कटाई ठ्युर हुना करलबा
11: हाम्रो डोम ओ गरिसक बाटकर्ली याकरसँग अरू कसिन मेरिक साँप हाम्रा देशमा पाजिना कर्छ हाम्रा गाउँघर आन्जर पाल्जर डेकपर्ना साँप मध्ये बिखा सापन कसिक चिन्ह ओसिन सापन से कसिक बच्नाकना सन्दर्भमा धरान स्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत डाक्टर से बातचित गर्न बाटी
19: डाक्टर साहब यी सर्पदंशक मौसममा खास गरी सर्वसाधारण र कसिन कसिन मेरिक सापन से नेपालमा मानव जीवनको क्षति उठा मनेन अपाङ्ग हुइपर्था अथवा मनेन मानसिक डर वसिङको ट्रमा ओ मनेन एक मेरसे सटेना कर्था यी साँप मुख्य कन कन जातको भित्र ओ हाम्रो भौगोलिक भूभागमा कसिन कसिन रठ ऊ सापनक लाग संक्षेपमा जनादिन
12: नमस्कार धन्यवाद पहिलो कुरो त यहाँ
20: नमस्कार धन्यवाद पहिला बाटोमै यहाँ हुकन संख्या कह चाहटु उ संख्या कल का हो कलसे नेपालमा हर साल करिब करिब 40,000 मनैन सर्पदंश हुइठा वो उही मसे 3,000 मनैन का मृत्यु हुइठन यी वैज्ञानिक तवरले नेपाल भर तराई क्षेत्रमा करलक सर्वेक्षण का परिणाम हो वो यी सर्पदंश करैना साँप ढ्युर खालक हुइलसे फे यहाँ का कहलसक अंग भंग करैना या मृत्यु का कारण जो बन्ना साँप चाहिँ ढ्युर नि हुइटा जस्ता हाम्रा कहबेर डोम प्रजाति गरैचा का प्रजाति वो बाघे साँप रसेल भाइपर प्रजाति चाहिँ मनैन का मृत्यु हुई सेक्ठा निकरा विशेष कै खा तराई भागमा पाजी ठा अब हाम्रा टनी कुचै और लागि पहाडी भेगमा पहाडी भेग का बाट कर बेर कैली साँप भर रठ जोन डेक पर बेर काल रठ मुह नाकक बिचमा एक ठो छोटी मोटी खोल्टी रठन तापक्रम मापन करना यन्त्र हो हाम्रो होइन पीठ कठी ओसिन हुइला कोर्से हुकनहक नाउ फे पीठ भाइपर रह गइलख ओहु काल जसिन निदेख पर्ना गुरुबे साँप रठ जेहेन रसेल भाइपर से फे झुक्क्या जाय यी साँपन से चाहिँ काकर कि रक्त प्रवाह कैख रकत ढ्युर भक मनैनक मृत्यु हुई सेक्ठा उह फे उ ढ्युर संख्यामा निरठ तर जसे डसल ठाउँ हाथामा डसल कलसे हाट कुहना ग्वारामा डसल कलसे ग्वारा कुहना हुइठा ओ आप जाय पहाड से ऊपर अर्थात हिमाली भेगमा पहाड से ऊपर विषाह साँप निरठकना निहो ओसिन निहो वहाँ हिमालय करेटकना महा विषाह साँप पाजिठ असिक सरासर ह्याराबेर हमार देशमा तराईमा सबसे ढ्युर डोमो गरैचा जे पक्षघात कराइसेक्ठ सास फेर्ना यन्त्र हन प्यारालाइसिस कराइसेक्ठ रक्त सराप कराइसेक्ना रसेल भाइपर अठकलसे पहाडमा पीठ भाइपर जे रक्त सराप कराइसेक्ठ देहीमा कटलक डसलक भाग कुहसेक्ठा असिन मेरिक सापनका बिगबिगी भाग
12: रक्त साफ गराउन सक्छ र शरीरमा टोकेको भागमा डसेको भागलाई कुहिन सक्छ त्यो सर्पहरू बिगबिगी छ
19: डाक्टर साहब तम्न नेपालको भूभागमा 40,000 मनिन साँप कट्ठ अथवा डस्ठकली उ 40,000 मध्ये कट्रामनी ज्यानको बैठक अपाङ्गता कट्रामनी झेल्छ
12: 3,000 जनामा सर्पदंश
20: 3,000 जनामा सर्पदंश होका मृत्यु हुँदा कलक करिब करिब 5 जनामा एक जना कोना ना कोना मिरिक अंग दुख पैना जस्त हा एम्पुटेसन ग्वारा काट पर्ना अंग्री काट पर्ना या त घाउ नम्मा समयसम निचो खैना 6 महिना 1 वर्ष भखरमै झापामा 60 वर्ष घाउ देखल रहनु एक ठो सर्पदंश बेरमिया वो मानसिक तनाव हुइना जोन हाम्रा मानसिक रोग कठी उ 10% हन हुइना तथ्याङ्क बा
12: हुने तथ्याङ्कहरू छ
19: और एक ठो बात यी सापन से 10 दिन मनी मध्ये महिला वा बालबालिका वा सिंहकै ख कुन मेरिक आर्थिक हैसियतको हुइलक मनी दसै छ
12: यो अति नै राम्रो प्रश्न
20: हो यी बहुत मजा प्रश्न करली सर अपना म यहाँ दुई ठो बात कह चाहटु एकटा सर्पदंश हुइना मनै कलक आर्थिक रूपले अति कमजोर हुइलक मनै हुइठन जे भुइँमा सुट्ठ छानी घर ठन या त कटकौरा खैना सुट्ना कुन्ती एक ठाउँ असक रठन ओ भुइँमा सुट्ठ या वहाँकरा खेती किसानी गर्थ बनुवामा काठी कर जैठ ओसिन बर्गना ठ्युर सर्पदंश हुइठन ओ ओसिन मनै छोटी आर्थिक भार फे बरा हुइठन हाम्रा साला खाला का देखला बाटी कलसे सर्पदंश हुइलक ब्रह्मयान एक फ्यारा बिरुवा कराइबेर 70 डलर जत्रा लख्ठा उ कलक उ भेक्क मनै ऋण कहार का बिरुवा करैना बाट हो ओ वहाँक्र उ ऋणक झमेलामा पर जैठा हाम्रा ओहेना डेप ट्र्याप कठी आम तहमा अस्पतालमा रलक डाटा हना हेर्ख बाट करबेर थारु मनै ढ्युर साँप डस्ना करल रह तर हमार तथ्याङ्क का देखैला बा कलसे जन्य वो लर्कनमा सर्पदंश ढ्युर अर्थात 64% बा कलसे मृत्यु हुइनामा 75% महिला हो बाल बालिका रहल बाट
12: 75% महिला र बाल बालिका हुनुहुन्छ
19: अब एक ठो भेगको बाट बटुवाई हाम्रो तराई से फे हुना टम डार्सा पहाडी भेगको बाट बटुवा सिक्लिए जस्तै कुछ जिल्ला सिन्धुली उदयपुर ओसियाका सुर्खेत ओसियाका मकवानपुर यी जिल्ला ना त तराई ना पहाड कहिको हाम्रो 22 ठो तराई जिल्ला भित्र निपरट यी 4-5 ठो छुट्ट खालका जिल्ला यी जिल्लामा फे साँपनको बिगबिगी सम्भव त तराई निर्णय हो कि नि हो न
12: हुने भयो अलिकति
20: होइन हुइल डान्डन पहाड र चौहत्ती जारबेर चाहिँ आप कहिले साँपनका वर्ग ठ्युर पारे
12: सरपारीको वर्ग बढी पाइन्छ
21: हमार गाउँ घरक आन्जर पान्जर डेक पर्ना साँपनको प्रकार नेपालमा भेटजेना बिखा साँपनको किसिम वो असिन साँपन से सुरक्षित रहना उपाय विषयमा डेलक महत्वपूर्ण जानकारी लाग डाक्टर सञ्जीव प्रति हाम्रो आभारी बाटी
22: डाक्टर सञ्जीव कहलस झट्ट ह्याराबेर सबको साँप ओस्तै देख पर्दछ फेन मुकनक रङ चुइसा आँख ओ कपारिक आकार हेर्ख बिखा हो कि नायकै खन पहिचान गर सिक्दिठा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सन् 2013 प्रकाशन गर्लक नेपालका विषालु सर्पहरू नाउक पोष्टक अनुसार डोम पहाडी गरिचा हिमाली गरिचा कैली साँप आधो साँप अथवा छिर्मिरे साँप हो बाघे साँप अथवा सुस्कर नेपालमा ठ्युर पाजेन बिखा साँप मध्ये खुइट
21: यी मध्ये गरेचा प्रजातिक साँप हाम्रो देशमा ठ्युर पाजेठ राटख मनै निदाइल ब्यालामा हिक्र डस सेक्ठ गरेचक डसाइसे लक्वा हुइसेक्ठा ओसाएका डोम साँप प्रायजसिन बिहानो सन्ध्या जुन सक्रिय हुना कर्ठो हिग्र फाँट फुलै छ। विशेषत तराई हो गर्मी ठाउँमा ढिउर मात्रामा पाजैन आसिन साँप दसलक भाग सुइना बठेना ओ लक्वा हुइना कर्ठा।
22: ओसेख कैली साँप अर्थात् पिट भाइपर हमार देशको पहाडी भूभागमा ढिउर पाजै छ। ओ यी दसलक लसे भारी कर्रा बठेना ओ सुइना कर्ठा हो रकट पाटी रोक रकट बहना हुइसक्ठा। बाघे साँप सामान्यतया हमार देशमा एकदम कम खेल पाजै छ, तर हिकन दसाई बडा खतरा पूर्ण रठन हो, अत्याधिक रक्तस्राव्य हुइसक्ठा।
21: असिन साँपनका विषयमा जानख सर्पतंश जोखिम मसे अप्न बची वो और झन जानकारी देख सर्पतंश खट्न हफे घटाई। सर्पदंश अथवा सापनका कटाइसे बच वो सापनका कटाइसे हुइसेक्ना मानवीय एवं शारीरिक क्षति विषयमा आम संचार अन्तर्क्रियात्मक रेडियो केन्द्रित अभियान जीवन सन्देश।
22: आब लागि बर्दिया जिल्ला बिन्दु व बाँके जिल्ला होमकुमारका बटकोहीवर विश्वविद्यालयका विद्यार्थी बिन्दु व होमकुमार आफ्नो अध्ययन अनुसन्धानको क्रममा मेरमेरिक ठाउँ वा समुदायमा पुग्ख सर्पदंशक विषयमा चेतना जगेन खर्लबाट।
21: आज कहाँ कैलबाट कहाँ कर्तीबाट कना विषयमा थाहा पाइक्ला। अब हाम्रो फेर लागि बर्दियावर
20: बिन्दु काकर्तीबाट हो।
13: ए हुमकुमार अहिलो लेऊ बैठो। आज हमार फेसबुक लाइभमा सर्पदंश विषयमा कौन चाहिँ विषयमा जानकारी देना हुई कैख तयारी व अनुसन्धान करती रहलका
20: हो। आ, काका बात भेटेलो त अनुसन्धान करब ये।
13: ओह सापनका दसाई मौसमी रठा व ढिउर जसिन बर्खा छ्याक ब्यालमा व बाली भिटैना समयमा सापनका दसाई घटना हुइना कर्था। बैह्या व और प्राकृतिक प्रकोपका कारणले सापनका बस्या र नाश हुँदै थिए दसैँ घटना ढिउर बिलक पाजै छ।
20: मै बुझल अनुसार चाहिँ ढिउर जसिन सापनका दसैँ हानिकारक नि रह उह फेरि साँप दस डारल कलसे जुन त लगभग उपचार केन्द्रमा जाइ पर्था कैख
13: हो त। ओ वर्षी अब हमार फेसबुक लाइभको समय फे हुइ लागल। आजक फेसबुक लाइभमा चाहिँ बर्खा छ्याकमा हमार तराईवर कसिन कसिन मेरिक साँप देख पर्ना कर्थ वाकर विषयमा जानकारी दिना त नि हुइ
20: हुइठा हुइठा बेन खै एकचोट हेरि त औरा काका बाट अनुसन्धान कैख पट्टा लगैला बाटो कैख।
13: यी हेरो
20: सापनका मेयर ओ साप सक्रिय होइना समय ओहो दुटा खतरा अनुसन्धान करला बाट त बिन्दु।
13: आब बर्खा छ्याक सुरु हुइ लागल बा बाली फे भिटेना ब्याला हुइल बा ओ आब हे जो जानकारी निदे बिकलसे मनै कसिक सचेत हुइ कहो त।
20: एकदम ठिक बात यह सापनका विषयमा पहिला महिन थाहानी हुइला कोर्से पश्चिम दुःख पहिला रहनु मै कहो ना।
13: हो निका
20: उह त मै छोटी रह बेर दाई डाँडल कैख पैरक कुरा त्या मना डुकल रहनु सपुवा रह कना थाहानी पैनु दोस्रो त दस डारल महिना तर तनिक्क दाई महिना सपुवा दसलक देख दर्दी ओ ब्यालामा उपचार केन्द्रमा लै जा दर्दी दोस्रा मजासे बिरुवा कराक चुम्मर फिलक हो त।
13: उह त ब्यालामा उपचार पागल कलसे त सर्पदंशसे बच सेक जैठाना तर का करना मार बर्की दिदी हन ब्यालामा उपचार केन्द्रमा पुगाइ नि पहिला कोर्से ओरा गैली अब सम्झबेर फे कसिन कसिन लक्ठा महिन त कत्रा मैया करत महिन।
20: आप बीच सकलक बाटका विषयमा कत्रा सोच्ना हो छोरो झन्खन कर बिनक हाम्रा सुरु करलक हमार तराई जिल्लामा सर्पदंशका विषयमा जनचेतना बढाइना अभियान चाहिँ हमन सशक्त तरिकाले चलाइ पर्था ओ सक्कुजन सचेत फे बनाइ पर्था।
13: ठिक हो ओ सक्कुजना सचेत हुइल कलसे त क्यु फे सापनका दसाईले मुह पल्ल खबर सुनानि परे।
20: हो निका फेर हाम्रा स्काउटसे यी सर्पदंशका विषयमा कसिक मनन सचेत बनिनाकै ख तालिम लेख फे एकदम मजा गरलिना हाम्रा।
13: हो त उहो तालिम लेख त हो नि आम्मा सर्पदंशका विषयमा मनैनमा समुदायमा सचेतना फैलाकलाग जाँगर लगलाग हो कि नै कहो त।
20: पुरा हो निका ओ असैक हाम्रा एक औरा जहन साथ देख हाम्रा अभियान हना सफल बनाइ पर्था ना।
13: उटा टु साथ नाडेउ कलसे फे साथ दिहम काकर कि सर्पदंशका विषयमा सक्कु जहनको चेतना निहुबेर अकालमा जो ज्यान गवाइ परला।
20: उह त लेओ तिन फे बजे लागल फेसबुक लाइकका समय फे हुइल जाइ लाइफमा जाइ
13: हुइठा जाइ। नमस्कार स्वागत बा आफ्नो कुरा सकु जहन आजुक सर्पदंश सम्बन्धी फेसबुक लाइभमा मै हुँ बिन्दु।
20: ओ बिन्दुसँग मै फे बाटुना मै हुँ कुमार ओ मोर तर्फ से फे नमस्कार ओ ढ्युर ढ्युर स्वागत।
13: ओ अपन हन जानकारी करा दारु कि हाम्रा हर शनिचर दिन इहे समयमा अथवा कहीँ 3 बजे से फेसबुक लाइभमा ऐना करती वो अपना हुकन से सर्पदंशका विषयमा छलफल करती अपना हुकनका प्रतिक्रिया फिर लेना करती कैख।
20: वो वर्षे हमन से जोर गेल रवि वो आजुक छलफलमा सहभागी फेबी कना आशा सहित अब हमसे 44 जना संघरिया हुकर फेसबुक लाइव फेर का साथ देती बात करा से 3-4 जना संघरिया हुकन का प्रतिक्रिया फिर आशे कर बार
1: तर वहाँ हुकन का पठेलक प्रतिक्रिया पढ़ना से आग आजुक विषय वस्तु का विषय में जानकारी करना हो कि हुं कुमार जी
20: हुईठा बिंदु पेन तो हाँ शुरू करा तो कि
1: हुईठा वो संघरिया आजुक सर्पदंश लाइव में हमरा अपना हुकन सापन का मेयर मुकर कट्टा बेला सक्रिय हुईठा वो बाहर निष्कट करना विषय में छलफल करने बाटी हो न हुं कुमार
20: हो निका वो वर्ष अपने हुकरा फेर सापन का मेर था बा वो हुकरा कतरा बेला सक्रिय हुई था कना विषय मा अपने हुकन जानकारी बाकल से हमन फेर जनाई सीखने बाटी ना
1: वो श्रोता अब बरखा छाक का समय हुईलक कारण लेकर बेर सापन का बसियारा मा पानी भरना हुईलक और से सांप बाहर सुखा ठाव मा जाख बैठना कर था
20: वो कभू काल मनेन का बैठना ठाव मा फेर आहारा खुस्ती आपुक था वो हो खा हमरा एकदम चनाको सचेत हुईना एकदम जरूरी बा होना बिंदु
1: हो निका ओहो वर्ष फिर हमारा सापन का प्रजाति का विषय में जनला रला से तो मजा हुई था सांप कट्टा बेला बाहर निष्कट हो सक्रिय हुई था कई खा
20: ओ बिंदु कमेंट बॉक्स में हमन हमार कुछ संघर्ष होकर अपन विचार फिर बांटल बांटा हमारा विषय से जो संबंधित बेन वहाँ होकर का संदेश जो पढ़ना हो कि दूसरा वाकर पाछा बाकी जानकारी करेगी
1: हुई था हूँ कुमार ओ मित्र भावेश लिखा बांटा हमार झापावर तो ढ्यूर जसिन डोम साहब देख पड़ना करता वो हर साल ढ्यूर मने जान फिर गवाई पड़ बांटन कई खा
20: संघरिया भावेश अपने प्रतिक्रिया का लाग ढीर ढीर धन्यवाद वो अपना कहला सा हमार गांव घर और वा कही खास गई था पूर्वी तराई का जिला मा ढीर जसिन डोम सांप देख पड़ना वा पाजी ना कर था
1: वो डोम सांप का प्रजाति चाहिए बड़ा आक्रामक को रिसाह स्वभाव कर था निक्र फाट फुलाई था निक्र खास के का बिहान और संध्या जुन सक्रिय हुई ना कर था निकन का दसाईले लकवा हुई सक था वह आक्रामक हुई लग कारण लेकर बेर फिर मित्र भाभे जी कहला ढीर मने जान गवाई पड़ बा
20: वो वर्ष हमरा एकदम होशियार हुईना जरूरी बा
1: वो वसै को पश्चिमी तराई का जिला में चाहे ढ्यूर जसिन गरैचा प्रजाति का सांप पाजे न करता वो ये प्रजाति का सांप दसले से निबटाई फिर सैकड़ तर आकर दसाईले पक्षघाट हुई सकता असिन सांप खास के खा रातिक समय में मनैन का घर भीतर ऐठ जब हुकरा अपनहिना खटरा हुईना आस लगठन ओसिन बेला हुकरा दस सीख
20: हो निका वो ये जानकारी संग और संघरियन का प्रतिक्रिया पहरना पाला वो संघरिया राकेश लिखला बाट मार घर चाहिँ दैलेख हो ओ हमार वर चाहिँ काल रंगक सांप ब्याला ब्याला मा देख पर्ना कथा कै खा लिखला बाट
1: ए कलसी मीटर राके चाहिँ काल रंगक सांप अर्थात हमार देश मा पाजिना औरो सांपन का प्रजाति हाइपर कैली सांप वा पत्तार का बात कर ल हु ओ असिन प्रजाति का सांप सामान्यतया पहाडी भूभागोर पाजैठ जस्तो संगरिया राकेश दैलेखोर कलजे हो पहाडी भूभागोर धुर देख पर्ना कर था ओ याकर दशलक भाग सोइना हो याकर बट कररा रठा
20: ओ चौथा चाहिँ बाघे सांप यी सापन का रंग चाहिँ ठ्याक्क बाघन का छाला में देख पर्ना रंग जस्ता जो रना करथन ओ याकर दशलक ब्रह्मिया नेपाल मा ढ्यूनी देख पर्था तर यी बड़ा खतरनाक रठा निकनक कटाई से जोर से रकत बहना करथा
1: ओ वर्षी हमरा एकदम सतर्क होशियार भी पर्था हुईना तो सक्कु सांप दिशा हानी रट तर फिर सांप दशलक खंड में चाहिँ चत्रा सैकल झट्टे उपचार केन्द्र में जाख उपचार चाहिँ कराडा पर्था हो कि नहीं हुं कुमार
20: हो निका बिंदु लेउटा संघरिया हुकरा आज हमरा सापन का प्रजाति का विषय में हुकरा सक्रिय हुईना विषय में देहल जानकारी कसिन लागल लिखा जिन भुलाई बिकटी आजुक फेसबुक लाइव में अपन बात बात देलक में सबको जहन ढेर ढेर धन्यवाद कटी आजुक फेसबुक लाइव में से बिदा पो मंगना हो कि बिंदु समय फेवराई लागल
1: हुईठा हुं कुमार लेउटा कबिला और ठारक यह समय में ऐना बाचा सहित आजुक सर्पदंश विषय में संचालन कर गेलक फेसबुक लाइव में से मई बिंदु
20: ओई जनचेतनामूलक संदेश संग मैं हूं कुमार फिर विदा मांगा तू
1: नमस्ते ली आजुक फेसबुक लाइव एकदम अंतरक्रियात्मक हुई कतरा जना संग्रहण आपन कमेंट पठेला कुइटना हूं कुमार
20: भोनिका सहभागिता फिर हुई वो जानकारी फिर दे गई हमार कबीला हुकरा बुझलके हुई कना आशा लागल
1: हो ना
20: क्या कर मैसेज आयल
2: ए बाजार को रहिछा का मैसेज पठेला बाटा हां तुहार पड़ोसी बुढ़ाम काका घर में सपुआ देख पड़ल बा मई ओहरे जाइटु तू के झट्टई हो ना ओहो बिंदु बुढ़ाम काका घर में तो सपुआ देख पड़ल बा हूँ बाजारू जाइटी बा हमरा फिर जाइना हो कि
1: हुईठा हुईठा हूँ कुमार जाई जाई
21: बिंदु ओम कुमार हमन बर्दी एक परिवेश में लेख गईल हमरा आज हुकनक बीच हुईलक छलफल से बर्दिया लगायत तराई क्षेत्र में पाजेना सापन के विषय में जानकारी पैली और कार्यक्रम में बिंदु ओम कुमारक संवाद में कुछ लौ थप जानकारी पक्क फे पाजाई
3: नेपालमा पाजिना बिखा साँपनको विषयमा सुन। एक ठोर गरैचा जुन खास कै राति समयमा घरभित्र पैठ सेक्ठ यी कटलसे निबठाई फे स्याकट तर कटलक पाछ देही भाग जो निचलना कैख सास फ्यार जो निसेक्ना मेसे लक्व हुई सेक्ठा और रठ डोम जुन बडा रिसाहा मेरिक रठ निकर फाँट फुले थ डोम साँप दिन वा रात दुनुमा देख पर्ना ओ खास कैख सन्ध्या बिहान देख पर्छ निकर कटलसे फे लक्व हुई सेक्ठा ओ और रठ कैली जाटक साँप निकर कटल कलसे कटलक भाग सुई था ओ बड़ा कर से बठे था रकट फे पाती होकर रकट बहना हुई से था उसे का हमार देशक तराई सक्कू भूभाग में पा देना बगोक ने न फुनकार ना बाघे सांप ई सांप दसलक बेरहमेन कम केल पा दे था तर हिकन कटाई एकदम खतरनाक रहा।
4: बर्खा छ्याको अनाज भित्रिना समयमा सापनका कटाई अथवा दसाईका घटना धिर बिना कर्था बैया वो और प्राकृतिक प्रकोपको कारण सापनका बस्यारा नाश विभेद सापनका दसाईका घटना धिर बिना कर्लक पाजाइ
5: झुर जसिन सापनका दसाई हानिकारक नि रहत उहो फे यदि सपवा दस डारल कलसे तुरन्त लगभग उपचार केन्द्रमा जा जाइ पर
23: विश्वास लग्ना ओ सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैख पट्टा लगाइक लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org मा जाख आवश्यक जानकारी लिए सक जिठा।
22: अठा बेला हाम्रो रेडियो कार्यक्रम जीवन सन्देश सुन्टीबाटी
24: सहभागी श्रोता यो विषयवस्तु छलफलकसँग रेडियो कार्यक्रम जीवन सन्देशक आज प्रस्तुत यी पहिला पैधारमसे मै पुष्पा
22: व मै एकराज बिदा मांगटी पौर पैधारमा सापनको कटाइसे बस्दा उपाय विषयमा आको लौ जानकारी लेख ऐनी जोबाटी आजुकलाग बिदाटी नमस्ते।
25: रेडियो प्रस्तुतिमा विद्वान पौनाउक र बटुलक भाग उहाँहरूको निजी विचार मान्जिने बा ओ नेपाल सर्पदंश रोकथाम परियोजनाका तर्फसे अभिव्यक्त विलक आधिकारिक विचारकै खमाना निवेट
26: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन WWF नेपालका साथै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेसनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत।
9: यो कृष्ण सार एफएम
0: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।
27: खुशीको खबर
28: हाम्रै शहर नेपालगञ्जमा वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आइरहेको नेपालगञ्ज नेशनल अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा दैनिक रूपमा विभिन्न स्वास्थ्य सेवा प्रदान हुँदै आइरहेको छ। यस अस्पतालमा दैनिक रूपमा विभिन्न विशेषज्ञहरूद्वारा ओपिडी सेवा हुनुका साथै विभिन्न सेवाहरू भइरहेको जानकारी गराइन्छ।
27: हजुर, हाम्रो यहाँ सर्जरी सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, प्रसूति तथा स्त्री रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, नसा तथा हड्डी रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, मस्तिष्क तथा मानसिक सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, छाला रोग सम्बन्धी उपचार, छाला रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, नाक कान घाँटी सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, सुगर ब्लड प्रेसर मुटु रोग पेट छाती कलेजो सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, प्याथोलोजी ल्याब सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार, भिडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे तथा अन्य सम्पूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालका साथै प्रत्येक महिनाको अन्तिम शुक्रबार काठमाडौँ मेडिसिटी अस्पतालबाट सुगर र थाइरोइडको उपचारका लागि डाक्टर सुमन बराल आउने जानकारी पनि गराउन चाहन्छौँ।
28: नोट, यस अस्पतालमा कार्यरत सम्पूर्ण डाक्टरहरूद्वारा प्रत्येक महिनाको अन्तिम शनिबार निशुल्क ओपिडी सेवा हुनुका साथै जाँचहरूमा 20% विशेष छुटको व्यवस्था गरिएको छ।
27: सम्पर्क नम्बर 081536465 98239806665 र 98482865 नेपालगञ्ज नेसनल अस्पताल बिपी चोक नेपालगञ्ज।
29: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो। सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन्, खुसीको खबर कहिले सुनाउने भनेर।
30: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ, तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन।
29: कति अस्पताल धायौ, कति उपचार गरायौ, अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।
30: होइन, हामीसँग अझै आशा छ। मैले शुभश्री आइबिएफ क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु, जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ।
6: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आइबिएफ क्लिनिक, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित।
29: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो।
30: धन्यवाद शुभश्री आइबिएफ, हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
6: थप जानकारीका लागि शुभश्री आइबिएफ क्लिनिक, सोल्टीमोड, काठमाडौँ। फोन नम्बर 98 61 14 16 99।
7: ओहो, हामी बिरामी भएपछि कहाँ जाने त?
8: तपाईँलाई थाहा छैन, नेपालगञ्जको शीतलनगर 10 त्रिशक्ति मन्दिरको सामुन्ने खुलेको छ नि चौधरी सरकार बक्स पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक प्राली।
7: हो र, त्यहाँ सुविधाहरू के रहेछ त?
8: एउटै छातामुनि विभिन्न सेवाहरू रहेको छ नि, जस्तै डाक्टर संकेत रिसाल फिजिसियन एवं पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ, डाक्टर उर्मिला पराजुली रिसाल स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डाक्टर आरके झा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ, डाक्टर दिनेश कुमार चौधरी नाक कान घाँटी एवं टाउको रोग विशेषज्ञ, प्रेक्षा सिंह चौधरी एकुपंक्चर पद्धतिबाट ठिक हुने रोगहरू हात खुट्टा नचल्ने, मुख बाङ्गो हुने, बाथ रोग, ढाड दुख्ने, मूर्छा पर्ने र नसा सम्बन्धी सबै रोगहरूको उपचार गरिन्छ।
7: अनकल सेवाहरू,
8: नवजात तथा बाल रोग विशेषज्ञ, मृगौला तथा मूत्र रोग विशेषज्ञ, हाड जोड्नी, अर्थोपेडिक सर्जन तथा नसा रोग विशेषज्ञ। प्याकेजमा हेल्थ जाँच गर्ने सुविधा पनि रहेको छ। प्याथोलोजी, भिडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, कानको सुन्ने शक्ति थाहा पाउनको लागि अडियोग्रामका साथै रगत, दिसा पिसाब, खकार, थाइराइड, बायोप्सी, कल्चरका एवं सबै प्रकारको हार्मोनको जाँच गरिनुको साथै औषधि सुविधा पनि उपलब्ध रहेको छ।
10: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म, दिउँसो 3:30 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म। डाक्टर दिनेश कुमार चौधरी नाक कान घाँटी एवं टाउको रोग विशेषज्ञ, बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म, दिउँसो 3:30 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म, शनिबार बिहान 8:30 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म।
8: सम्पर्क फोन नम्बर 081-533-719, 98-480-22-229 र 98-605-22-229।
11: सामान खरिद गर्ने यति लामो लिस्ट सर, र हेर्दा नेपालगञ्जदेखि लखनऊसम्म धाउनु पर्ला कि क्या हो?
14: होइन बहिनी, यसमा आत्तिनु पर्ने केही छैन। अब यी सबै ब्रान्डेड कम्पनीको सक्कली र उचित मूल्यको सामान एउटै विशाल बजार मारुति मेगा मार्टमा पाइन्छ। यो रुपैडिया बजारको सब्जी मण्डीको छेउमा रहेको मारुति मेगा मार्ट हो। बहिनी, त्यहाँ शादी विवाहको सबै सामान, सौन्दर्य प्रसाधन, सुटिङ, सर्टिङ, साडी, अन्डर गार्मेन्ट्स, होम एप्लायन्सेस, ड्राई फ्रुट्स, विद्युतीय उपकरणहरू, आर्टिफिसियल ज्वेलरी, किचन तथा टोयलेटहरूको सामान आदि सबै सामग्रीहरू एकै छाना मुनि पाइन्छ।
15: स्थान मारुति मेगा मार्ट सब्जी मण्डी अगाडि गल्लीमा नानपारा रोड रुपैडिहा बजार। मोबाइल नम्बर 98-699-64-581।
16: अया, कान दुखेर हैरान भइरहेछ, के गर्ने, कहाँ जाने होला?
8: बहिनी, किन चिन्ता लिनुहुन्छ? ब्रिनोज कान स्वास्थ्य सामुदायिक सेवा हुँदाहुँदै हाम्रा सेवाहरू नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ तथा कान स्वास्थ्य प्राविधिकद्वारा दैनिक रूपमा कानको परीक्षण जाँच गर्नुका साथै अपरेसन गरिन्छ। कान नसुन्ने बिरामीहरूको लागि कान सुन्ने विभिन्न मेसिनहरू सहुलियत शुल्कमा उपलब्ध गराइन्छ। कानमा पर्न गएका विभिन्न प्रकारका बाहिरी वस्तुहरू, कानको कानेगुजी निकाल्ने, कानेगुजी तथा अन्य कानका फोहोर वस्तुहरूको सरसफाई समेत गरिन्छ। लामो समयसम्म कान पाकिरहेमा वा पिप आइरहेमा कान चिलाउने, कान दुख्ने, कान कराउने, कान डम्प हुने, कानबाट तरल पदार्थ निस्किने, कान कम सुन्ने बिरामीहरूको कान परीक्षण गर्नुका साथै प्राथमिक कान उपचार तथा आवश्यक सल्लाह सुझाव दिइन्छ।
17: साथै प्रयोगशालाको पनि व्यवस्था रहेको छ। अस्पताल शनिबार दिउँसो 1 बजेसम्म खुल्ला रहनेछ।
8: विस्तृत जानकारीको लागि ब्रिनोज कान स्वास्थ्य सामुदायिक सेवा फुलचेक्रा 5 नेपालगञ्ज, सम्पर्क फोन नम्बर 081-530-244, 98-580-81-244।
18: नेपालगञ्जका लागि सुपर स्पेशियालिटी विशेषज्ञ सेवा सहित आएको छ शिखर हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राली। हाम्रा सेवाहरू अनुभवी तथा विशेषज्ञ चिकित्सकको साथमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार र परामर्श, गम्भीर मृगौला रोग, डायलिसिस व्यवस्थापन, मृगौला संक्रमण, पत्थरीको निदान तथा उपचार, सुगर र उच्च रक्तचापको उपचार व्यवस्थापन तथा मृगौला प्रत्यारोपण तयारी र निगरानीको लागि पश्चिम नेपालमा एकमात्र डिएम नेफ्रोलोजिस्ट डाक्टर सौरभ सिंह हमाल। एपेन्डिक्स, पित्त थैली, आन्द्रा, कलेजो सम्बन्धी समस्याको उपचार तथा दूरबीनबाट अपरेशन सेवा, पेटको क्यान्सरको शल्यक्रिया र इन्डोस्कोपी कोलोनोस्कोपी जाँचका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट आउनुभएको एमसिएच ग्यास्ट्रो तथा हेपाटोबिलियरी सर्जन डाक्टर प्रदीप थापा। नवजात शिशु तथा बालरोगको उपचारको लागि कान्ति बाल अस्पताल काठमाडौँमा पूर्व कार्यरत डाक्टर प्रतिमा खड्का। प्रसूति तथा स्त्री रोगको उपचार तथा शल्यक्रियाका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट आउनुभएकी डाक्टर प्रेरणा मल्लिक। साथै गुणस्तरीय प्रयोगशाला, इन्डोस्कोपी जाँच, इसिजी, इइजी, एनसिभी, एक्सरे तथा भिडियो एक्सरे जाँचका साथै सम्पूर्ण किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरूको विशेषज्ञ डाक्टरबाट गुणस्तरीय उपचार र परामर्शको सुविधा रहेको छ। सम्पर्क शिखर हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राली, भेरी अस्पताल अगाडि रामलीला मैदान जाने बाटो, रोयल क्याफे भएको बिल्डिङ, नेपालगञ्ज। सम्पर्क फोन नम्बर 081530220 र 98145689। 081530220 र 98145689।
1: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता, सूर्य ज्योति सही प्लान,
2: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि।
3: छोटो समयमा धेरै संस्थामा डाक्टर, इन्जिनियर तथा सिए बनाउन सफल पेन्टागन कलेजमा कक्षा 11 लागि विज्ञान, व्यवस्थापन तथा कानुन संकायमा भर्ना खुल्यो। पेन्टागन कलेज, तिनकुने, काठमाडौँ।
4: पश्चिम नेपालकै शैक्षिक केन्द्र नेपालगञ्जमा तपाईँका सपनाहरूलाई साकार पार्ने प्रतिष्ठित नाम हो मोडर्न पब्लिक सेकेन्डरी स्कुल। अनुभवी शिक्षकहरूद्वारा अध्यापन गराइने यस विद्यालयमा कक्षा 11 विज्ञान, व्यवस्थापन र कानुन संकायमा भर्ना खुलिसकेको छ।
5: गुणस्तरीय शिक्षा र उत्कृष्ट मार्गदर्शनका लागि आजै सम्पर्क गर्नुहोस्। फोन नम्बर 081531359, 98582466 र 98584488।
4: मोडर्न पब्लिक सेकेन्डरी स्कुल, शीतलनगर, नेपालगञ्ज, बाँके। एसईई परीक्षा उत्तीर्ण सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक बधाईका साथै उज्जवल भविष्यको कामना सहित यस आदर्श मावि नेपालगञ्जमा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विज्ञान तथा व्यवस्थापन संकायमा कक्षा 11 नयाँ भर्ना खुलेको सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा अभिभावकमा सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। सीमित सिटका लागि भर्ना खुलेकोले छिट्टो सम्पर्क गर्न हुन पनि अनुरोध गर्दछौ।
5: हाम्रा विशेषताहरू: भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न, यातायातको सुविधा, उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल, एसी क्लासरूम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रविधि मैत्री शिक्षण सिकाइका क्रियाकलापहरू। प्रविधि मैत्री शिक्षण सिकाइ,
4: दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकहरूद्वारा साइन्स अन्तर्गत बायो र फिजिकल ग्रुप र म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत कम्प्युटर साइन्स, होटेल म्यानेजमेन्ट, बिजनेस स्टडिज र फाइनान्स अध्यापन गराइने।
5: सम्पर्क आदर्श माध्यमिक विद्यालय, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। फोन नम्बर 081537994, 98587994, 98588195 र 98588197।
12: आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु नै साँचो आत्मविश्वास हो। त्यसैले त नेपाल परिवार नियोजन संघ बाँके शाखा विगत लामो समयदेखि यहाँहरूको सेवामा समर्पित छ। हामी कहाँ पूर्ण गोपनीयताका साथ सुरक्षित गर्भपतन, परिवार नियोजनका साधन, पाठेघरको मुख र स्तन क्यान्सरको परीक्षण तथा यौन र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श सेवा उपलब्ध छन्। विशेष सुविधा: अब प्रत्येक आइतबार दिउँसो 3-5 बजेसम्म स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्देश आचार्यद्वारा विशेष परामर्श र उपचार पनि पाउनुहुनेछ।
4: ढिला नगर्नुहोस्, आजै स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श लिनुहोस्। ठेगाना: नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, वडा नम्बर 9, रामलीला रोड, नापी शाखा अगाडि।
12: फोन नम्बर 081530398।
13: सोचे भन्दा सस्तोमा हाई क्वालिटीका सोफा र फर्निचर चाहियो? आउनुहोस् सोफा हब नेपालगञ्ज।
0: हरेक सामानको खरिदमा 1000 देखि 20000 सम्म छुट, 10 देखि 15 वर्ष सम्मको वारेन्टी, साथै फ्री डेलिभरीको सुविधा पनि। अहिले थमाथम बिक्री भइरहेको छ।
9: स्थान राजा चोक राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको अगाडि।
0: सम्पर्क 97051148 70।
9: सोफा हब नेपालगञ्ज,
0: विश्वासमा नम्बर 1,
9: क्वालिटीमा सबैभन्दा बेस्ट।
13: यो कृष्ण सार एफएम
19: 94 मेगाहर्ज, कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: toilet pony, yeah. Extreme energy drink.
1: व्यवसायिक कृषि पद्धति अपनावे के खातिर कृषक वर्ग के यहाँ कृषि व्यवसायिक प्रवर्धन सहयोग और तालीम केंद्र खजुरा बाके के विशेष अनुरोध।
2: कृषि क्षेत्र में यहाँ व्यवसायिक पद्धति अपनाए के आय मूलक व्यवसाय मार्फत आत्मनिर्भर बना जाए और बनावा जाए। कृषि पेशा के यहाँ मर्यादित बनावे उद्यमशील विकास कई के रोजगारी सृजना करा जाए करावा जाए। कृषि व्यवसाय में यहाँ तुलनात्मक विश्लेषण कई के आमदनी मूलक व्यवसाय छनौट करा जाए। खेती व्यवसाय के नियमित अभिलेख रख के विश्लेषण करक बानी बैठावा जाए। बाजार देख के मात्र उत्पादन योजना बनावा जाए। व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तैयार कई के कार्यान्वयन करा जाए। सफल उद्यमी बनो, व्यवसाय के यहाँ निरंतरता देव, विस्तार करा जाए करावा जाए। कृषि प्राविधिक विज्ञ लोगन से नियमित सर सलाह और सुझाव लीन जाए और वही अनुसार व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करा जाए करावा जाए।
1: अकेले प्रयास से कृषि क्षेत्र में यहाँ व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में यहाँ कार्यान्वयन न कई सके कारण से हम लोग निजी और सरकारी सब सरोकार वाला लोग एकजुट होई के अपन अपन भूमिका निर्वाह संबंध में सहकार और प्रयास करा जाए करावा जाए।
2: तब आवश्यक सर सलाह और जानकारी के खातिर नेरे के संघीय तथा प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा उपलब्ध करावे वाले कार्यालय केंद्र प्रयोगशाला निर्देशनालय और स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में यहाँ संपर्क रखे खातिर अनुरोध करा जाता है। कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालीम केंद्र खजुरा बांके।
3: बहनी हमार घर तो बढ़िया है, मने पुरान फर्नीचर तो घर के चमक हटाए दी जस लागत है।
4: हाँ तो दीदिया, अब तो घर के यहाँ नया परिवर्तन देहिन का परी जस लागत है। आरामदायी और मॉडर्न कुछ चाही।
3: अच्छा अस है तो चिंता काहे करी हो, स्टार फर्नीचर लैंड में यहाँ तो सब मिलत है।
4: साचू दीदिया, का का मिलत है हुआ?
3: सुनो बहनी, स्टाइलदार सोफा, आरामदायी बेड, आकर्षण डाइनिंग टेबल, टीवी रैक, ऑफिस फर्नीचर, गलीचा कारपेट के साथ है घर सजावे वाला सब सामान चीज एक जगह में मिलत है।
4: और डिजाइन अपनी इच्छा अनुसार बनाई के देते है।
3: काहे न बनाई दी बहनी, अपने चाहे जिस डिजाइन अनुसार भी बनावत है।
4: और मने डिलीवरी और फिटिंग?
3: अरे बहनी, बाके और बर्दिया जिला तक फ्री होम डिलीवरी है। इके साथ फ्री फिटिंग सेवा तो बिल्कुल ही फ्री है।
5: आज है तो अब हमरो घर भी नवा जस बनावे है। स्टार फर्नीचर लैंड से शुरू कीन जाए। हाँ दीदिया,
2: स्टार फर्नीचर लैंड शिक्षा कार्यालय के सामने बीपी चौक नेपालगंज। संपर्क नंबर 9886073370 और 9815067682।
6: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो। सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन्, खुसीको खबर कहिले सुनाउने भनेर।
7: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ, तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन।
6: कति अस्पताल धायौ, कति उपचार गरायौ, अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।
7: होइन, हामीसँग अझै आशा छ। मैले शुभश्री आइबिएफ क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु, जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ।
8: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आइबिएफ क्लिनिक, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित।
6: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो।
7: धन्यवाद शुभश्री आइबिएफ, हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
8: थप जानकारीका लागि शुभश्री आइबिएफ क्लिनिक, सोल्टीमोड, काठमाडौँ। फोन नम्बर 9861414169।
9: यो कृष्ण सार एफएम
10: 94 मेगाहर्ज, कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: बीर डेंटल
1: नेपालगंज शहरमा सञ्चालित अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न बीर डेंटलमा दाँत तथा मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार काठमाडौँ तथा भेरी अञ्चल अस्पतालका अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आरके लामिछानेद्वारा उपचार गरिन्छ।
2: डाक्टर लामिछानेद्वारा गरिने विशेष उपचारहरू: दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत आउने, पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेँलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
1: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
2: फोन नम्बर 081-532-375।
3: हाय रे दीदिया, हमार टिहुनी बहुत पीरा थे, बहुत दवाई कराए डाले, नाई ठीक आते।
4: सुनो बहिनी, खुशी के खबर, कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जाता है। और हुआ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिस, हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फीसर भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग, ब्रिये और अंडकोश और मर्दांगनी के कमी हुए समस्या साथेन कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जात है। और जानत हो हाथ गोड़ करिहाव, रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाब, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथेन प्लास्टर बांधा जात है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथेन ऑपरेशन किया जात है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल कैंसर, मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, हार्ट जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ।
4: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सुर्खेत रोड, आदर्श नगर, नेपालगंज 10, बांके, वन कार्यालय के नेरेन, पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 081-531-000।
6: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बीमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता, सूर्य ज्योति सही प्लान,
7: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि

0: खुल्यो खुल्यो खुल्यो
1: तपाईको आफ्नै शहर कोहलपुरमा टीवीएस शोरूम खुल्यो।
0: स्टाइल, पावर र भरोसा अब एकै ठाउँमा
1: कोहलपुरमै पाइन्छ। टीवीएस का नयाँ बाइक र स्कूटर, दमदार परफर्मेन्स र उत्कृष्ट माइलेज का साथ सेल्स सर्भिस र स्पेयर्स, सबै सुविधा एउटै छानामुनि, साथमा फाइनान्सको सुविधा पनि।
0: आजै आउनुहोस् नेपाल अटो पार्ट्स एन्ड सप्लायर्स, कोहलपुर 11 बाँकी।
1: हजुर, नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा। सम्पर्क नम्बर 98125 26 711 र 98 20 18 37 86। नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा।
2: चर्चा छ मार्केटमा, हाम्रो नाम घन्किन्छ।
3: नानीलाई कुन स्कुल भर्ना गर्ने होला? म त साह्रै चिन्तामा पो छु।
0: हेत्तेरिका, किन चिन्ता लिनु भएको? हाम्रै नेपालगञ्ज 12 बेलासपुरमा न्यू भिजन इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल छ नि।
3: ए हो र, त्यहाँ कस्तो सुविधा छ र? उही किताब मात्रै घोकाउन त होला?
0: त्यस्तो होइन नि, त्यहाँ त डिजिटल क्लासरुम छ नि, जहाँ बालबालिकाहरूले आधुनिक प्रविधिबाट रमाइलो मान्दै सिक्छन्।
3: अनि सुरक्षाको कुरा नि? अहिलेको समयमा त डर पनि लाग्छ हौ।
0: त्यसको लागि चिन्ता लिनु पर्दैन, पुरै स्कुल परिसरभरि सिसिटिभी क्यामेराको निगरानी छ नि।
3: अनि शुल्क?
0: सुलभ शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा नै यस विद्यालयको मुख्य विशेषता हो नि।
4: हाम्रा विशेषताहरू:
0: प्रविधि मैत्री शिक्षा,
3: गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ,
0: खेलकुदमा विशेष जोड,
3: शान्त र बालमैत्री वातावरण,
0: सिसिटिभी जडान भएको सुरक्षित विद्यालय परिसर
3: र स्कुल भ्यानको सुविधा समेत छ।
0: न्यू भिजन इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल, नेपालगञ्ज 12 बेलासपुर। सम्पर्क नम्बर 081-538-505।
5: बहिनी, हमार घर तो बढ़िया है, मने पुरान फर्नीचर तो घर के चमक हटाए दी जस लागत है।
6: हाँ तो दीदिया, अब तो घर के यहाँ नया परिवर्तन देहिन का परी जस लागत है। आरामदायी और मॉडर्न कुछ चाही।
5: अच्छा, ऐसा तो चिंता काहे करी हो, स्टार फर्नीचर लैंड में यहाँ तो सब मिलत है।
6: साचू दीदिया, का का मिलत है हुआ?
5: सुनो बहनी, स्टाइलदार सोफा, आरामदायी बेड, आकर्षण डाइनिंग टेबल, टीवी रैक, ऑफिस फर्नीचर, गलीचा कारपेट के साथ है, घर सजावे वाला सब सामान चीज एक के जगह में मिलत है।
6: और डिजाइन अपनी इच्छा अनुसार बनाई के देते है?
5: काहे न बनाए दी बहनी, अपने चाहे जिस डिजाइन अनुसार भी बनावत है।
6: और मने डिलीवरी और फिटिंग?
5: अरे बहनी, बांके और बर्दिया जिला तक फ्री होम डिलीवरी है, इके साथ है फ्री फिटिंग सेवा तो बिल्कुल ही फ्री है।
7: आस है तो अब हमरो घर भी नवाजस बनावे है, स्टार फर्नीचर लैंड से शुरू कीन जाए।
6: हाँ दीदिया,
8: स्टार फर्नीचर लैंड शिक्षा कार्यालय के सामने बीपी चौक नेपालगंज। संपर्क नंबर 98-86-073-70 और 98-195-067-82।
9: यो कृष्ण सार FM
10: 94 मेगाहर्ज, कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी